मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ

0: साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। गणपति हमारे प्रथम पूज्य देव हैं, तो आइए आराधना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणपति वंदना के साथ। इस वंदना को अपने स्वर से सजाया है हरिओम शरण ने।
2: उपस्थित भक्त जनों, संगीत पीठ रसेश्वर, विश्व विख्यात भजन गायक श्री हरिओम शरण आज की शाम हमारे बीच हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हरिओम शरण एक ऐसा नाम है जो अपने आप में एक मंत्र है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। उनको देखने मात्र से ही हृदय में आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत होने लगती है और मन गदगद हो जाता है। श्री हरिओम शरण जी के भजनों में हिमालय सी ऊंचाई है, कल कल करते झरनों सा संगीत है, खिले हुए फूलों सी निर्मल सुगंध है।

श्रोताओं, गणेश जी की आराधना करने से हर विघ्न टलते हैं। और अब लीजिए सुनिए लक्ष्मी शंकर के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को। ईश्वर की आराधना करने का कोई सिद्धांत नहीं होता है, बस पवित्र मन और शुद्ध आस्था चाहती है।

बिखरे हूँ जब जीवन में अंधकार, तो माँ आकर थाम लेना हाथ मेरा। श्रद्धा और विश्वास से जपो उसका नाम, हर मुश्किल हो जाएगी आसान। श्रोताओं लीजिए सुनिए पंडित जसराज के स्वर में गए इस भक्ति रचना को।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
6: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र में। श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हे माँ, तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया है ये जीवन, पतवार मेरी जीवन की नया तुम संभाल लेना मेरी मैया। श्रोताओं, लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में अभी आप लता मंगेशकर के स्वर में गए इस भक्ति रचना का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप शहीद भगत सिंह के विचार सुनेंगे।
1: 131 के 23 मार्च को सायंकाल ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर कांड के राजद्रोह में सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु और श्री सुखदेव, इन तीन राष्ट्रभक्तों को फांसी दी थी। लाहौर कांड का संबंध पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या से था। ये सैंडर्स वही था जिसने सन 1928 में लाहौर स्टेशन पर साइमन कमीशन का विरोध करने पर महान राष्ट्रसेवी लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां बरसवाई थीं कि एक महीने के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। इन क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने सैंडर्स की हत्या कर उसका बदला चुकाया था। इनमें शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम था, पर वे पकड़े नहीं जा सके थे। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली के असेंबली भवन में बम फेंक कर भारत के क्रांतिकारी युवकों का सिंहनाद ब्रिटिश हुकूमत को सुनाया था। पहली बार भगत सिंह ने असेंबली भवन के दरवाजे पर बम फेंकने के साथ इनकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दो नारे लगाए थे। इस बम कांड के बाद उन्होंने अपने आप को वहीं गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद उन पर मुकदमा चला। भगत सिंह ने बलवंत सिंह इस छद्म नाम से पत्रकारिता भी की थी। वे देश की स्वतंत्रता चाहते थे तथा देश में समाजवादी प्रजातंत्र देखना चाहते थे। इसीलिए जिस दल का गठन किया गया था उस दल का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमें भगत सिंह के विचार उनकी पत्रकारिता के लेखों में तथा जेल से लिखी चिट्ठियों में मिलते हैं। उनसे ये प्रकट होता है कि स्वतंत्र भारत की कैसी तस्वीर सरदार भगत सिंह के हृदय में थी। सरदार भगत सिंह अखंड भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। उनके क्रांतिकारी साथियों में भारत के उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी सभी क्षेत्रों के लोग थे। भगत सिंह मानव मात्र को अपना भाई समझते थे तथा भारत को हिमालय से समुद्र तक एक राष्ट्र मानते थे, जिसमें कई जातियों, धर्मों तथा भाषाओं के लोग निवास करते हैं। इन सभी का राष्ट्रधर्म एक है, ये उनका विचार था। वे आदर्श क्रांतिकारी नेता थे। उनकी स्वतंत्रता ये नहीं थी कि गोरों का शासन समाप्त हो जाए और भारतीय शासन करने लगे, वरन वे चाहते थे कि समाजवादी व्यवस्था कायम हो, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, धर्म और संप्रदाय के नाम पर भोली भाली जनता बेवकूफ न बनाई जाए। वे सिख होकर भी मानव मात्र को अपना भाई समझते थे। 2 फरवरी 1931 को जेल से गुप्त रूप से उन्होंने साथियों के नाम एक पत्र भेजा था। उस समय भगत सिंह के सामने गांधी इरविन समझौते का भी खाका था, जो इन क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं था। उस पत्र की कुछ पंक्तियों में ये कहा जाता है कि भगत सिंह के हृदय में आज़ादी की कितनी बड़ी तमन्ना थी, उसका हमें पता चलता है। राजनीतिक संग्रामों का समझौता एक अत्यावश्यक अंग है। किसी भी कौम के लिए जो किसी अत्याचारी शासन के विरुद्ध खड़ी होती है, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी चाल थोड़े समय के लिए धीमी हो तो उसके नेता पीछे पड़ जाएं, किंतु जनता की बढ़ती हुई ताकत समझौतों को ठुकराकर उस आंदोलन को जययुक्त करा देती है। नेता पीछे रह जाते हैं, आंदोलन आगे बढ़ जाता है। अपने भाई करतार सिंह को उन्होंने पत्र में लिखा था, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है, फानी रहे या न रहे। अर्थात मेरे बलिदान के पीछे स्वतंत्रता के विचारों की बिजली चमकेगी, ये मुट्ठी भर मिट्टी का नश्वर शरीर रहे या न रहे। उनके विचार और भाव

0: बहुत सत्य थे। भगत सिंह के नाम के पीछे आज भी राष्ट्रीयता के भावों की बिजली चमकती है।
1: श्रोताओं, विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सरदार भगत सिंह के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम आप समाप्त होता है। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे कृषि यंत्रों के रखरखाव में ध्यान देने योग्य बातें, और इस विषय पर बातचीत की है लाल राजेंद्र प्रताप सिंह से शैलेंद्र प्रताप सिंह ने।
1: किसान भाइयों, खेती किसानी में कृषि यंत्रण का प्रयोग बहुधा होत है। हर तूर में हर समय कृषि यंत्रण का काम लागत रहा था। जरूरत यह बात का बाटे कि भाई कृषि यंत्र हमार सही रहें, उनका सही समय पर इस्तेमाल हो सके, तेरे बड़े देखभाल करब उनका जरूर रहा था, रख रखाव उनका करब जरूर रहा था। तो यही कुल विषय पर बात कही कि बड़े आज अपने बीच में भैया लाल राजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो उनकी कृषि यंत्रण का बड़ा विशेषज्ञ रहा है। भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे। आज हम ये जानना चाहब कि हमारे किसान भैया हरे भाई हर तूर में हर कृषि कार्य में कतहुँ कतहुँ यंत्रण का प्रयोग करत है, तो ओकरे देखभाल में का कुछ करे के जरूरत है और कैसे सवाच के ओका रखें ताकि जब समय पड़े तो कृषि यंत्र उनकर सही मिले और काम कर सकें।
2: बिल्कुल सही कहें भैया। देखें भैया, रबी के फसल के बुआई कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग करे वाले हैं, तो एहमा ये कृषि यंत्रण के उपयोग आपके जोताई से लेके यानी खेत के तैयारी से लेके और भंडारण तक
1: जरूरत पड़त है।
2: समय और श्रम दोनों को देखते हुए मशीनन के उपयोग बढ़ा है। हियाँ तक स्थिति है कि कुछ लोग तो जो रखे हैं वो तो करबे करत हैं, लेकिन किराए पर यंत्रण का मंगाए के उनसे काम नींद जाते
1: हैं। जी जी।
2: तो आपके जो ये प्रश्न, अच्छा दूसर अब यह तरह के उपयोगी यंत्र हैं तो वो हर साल खरीदा नहीं जा सकते हैं, ऐसे कि भाई महंग होते हैं। तो अहमा जो उन किसान भाई का हमारे ध्यान रखे के जरूरत है, एक सामान्य रूप में हम बताई दी कि काम जब शुरू हो के हो तब और काम जब ख़त्म कर लें तब। तो जैसे पहले तो ये कहा कि आपके जैसे जुताई के खातिर तमाम यंत्र हैं या और काम के खातिर यंत्र हैं, जोने में कि कटाई, नोक, स्प्रिंग, नट, बोल्ट, क्लिप वगैरह लागत थी। तो भैया काम शुरू करे के पहले एक दाई निगरानी कर लें, चेक कर लें, और हमें जौन कुछ भी खराब हुए बदले लायक हो तो बदल लें। बहुत किसान भाई क्या करते हैं कि उसका जुगाड़ तो एहमा हम ऐसे न कहा कि चलत रहा है, अगर वो फेंक दे तो घायल कर दे थे।
1: हाँ, नुकसान
2: तो ऐसे जैसन जैसन ओकर स्थिति हो वो हिसाब से ओका कस लें स्वयं अगर कह सकें, और नहीं तो फिर केहू को दिखाए के बदल लें।
1: मतलब मरम्मत करे लायक रहा तो मरम्मत करे कि भाई सही कर लें मशीन का, और अगर लगा था कि मरम्मत करे बात न बने कल पुर्जा बदले पड़े तो वह बदल लें।
2: जी जी। इसी तरह जौन भी धंसे वाले हैं जौने में कि नोक धार वगैरह भी रहा थी,
1: हाँ
2: तो उ में भी भाई अब नोक बनवावे को हुई, धार बनवावे को हुई, तो वो आपको किसी के पास जाना ही पड़ेगा धार धरे वाले के खातिर या नोक बनावे वाले खातिर। तो ओके खातिर वह चेक कर लें और ओका यथा अनुसार जैसन हो उतना ध्यान कहे कि अगर काटी ना धार न हो तो कटबे न करी,
1: हाँ
2: तो और नोक न हो तो धंसबे न करी, तो ऐसे उहू को भी सही करा लें। एक अलावा भैया जैसे हमारे किसान भाई लोग कल्टीवेटर चलावत हैं या और यंत्र जौन भी चलावत हैं, चाहे सीड ड्रिल के हो चाहे जौन हो, वह सब में एडजस्टमेंट बना होते, यानी ओका कम ज्यादा कीन जा सकत है, ऊपर नीचे कीन जा सकत है,
1: हाँ हाँ,
2: जैसे कि गहराई और चौड़ाई वगैरह नियंत्रित हो। तो जैसन उनका आवश्यकता हो हिसाब से ओकर भी नट बोल्ट चेक कर लें, अगर ओका समायोजित करा चाहते हैं, एडजस्ट करा चाहते हैं तो ओका कर लें और फिर तब ओकर उपयोग करोगे। इसी तरह भैया कुछ है जैसे अब आपके थ्रेशर है जौने में कि बेल्ट पुल्ली के सहारे घुमावे के वो रहा था, तो ओमा या घिस के जौन चलत है आपस में जैसे दतुआ अतुआ

0: थे, तो उनमें अगर ग्रीस उरीस लगाई दही तो उमा घर्षण कम होई और वो आराम से कम वजन उठाए के चली।
1: और कल पुर्जा भी भाई से
0: हाँ और ओकर तनी जिंदगी बढ़ जाई। इसी तरह जौन आपके चलावे खातिर चेन कहूँ कहूँ लगी होत है, कहूँ पट्टा लाग होत है, कहूँ आपके, तो ओकर तनाव के जांच कर लें। आप देखे हो ही चक्की उक्की पर हो सकता है ध्यान दे, हाँ, या पानी चलावे वाली मशीन पर कि ऐसे फटर फटर के आवाज़ आवत हाँ, रहा था तो ढील रहा था। ओकर नुकसान ही होते कि कबो भी अगर फेंक दिए, या आप देखा तो यही वह ये डामर जो उन्हें कहा था सड़किया बनावा जाते यूँ को चार कोलों को डार के ओका सोचा था कि चपकाए रहें, तो भैया ये चीज़ उचित न हो। ऐसे उचित तो यह आए कि एकदम सही तनाव रहे, एकदम सही ओकर बैठान रहे, जैसे ई स्थिति से बचा जा सके।
1: मतलब पट्टा का भाई अच्छे से कस के लगा,
0: हाँ पट्टा पुल्ली दोनों को देख के चले
1: और ग्रीस और तेल देख
0: हाँ,
1: रहा
0: हाँ हाँ हाँ भैया
1: अभी समझे तो छर्रा उड़ा कट गया भाई को बदल,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: नहीं तो एक छर्रा कटा तो पता चला पूरा बेयरिंग खराब।
0: हाँ अब वही वही पर जैसे अब स्प्रॉकेट लगा है, अब स्प्रॉकेट के कोनो एक दांता कटा है, जब दूसरे पर चली तो वो थोड़ा सा स्लिप करके चली, तो उसे मशीन के कार्यशैली पर असर पड़ी। इसी तरह अगर आपके पुल्ली के कहूँ धार कट गए बा तो वह नुकसान करी, तो बिल्कुल सही बात ही कि आप इस तरह से करें। और एम पुल्ली वाले जितने हैं, चाहे वो पंपिंग सेट में ला गए, चाहे आपके थ्रेशर में ला गए, चाहे पानी उठावे वाले पंप में ला गए, यह सब में सबसे ज़्यादा आवश्यकता ये है कि निश्चित रूप के पुल्ली जौन हई, अब पता चला नीचे अगर आप बड़ी पुल्ली लगाई दी है, ऊपर आप छोट लगाई दी है, तो वहाँ दिक्कत हुई चाल में। अगर छोट लगाई दी है बड़ा लगाई दी है वह में चाल में, तो जौन ओकर बतावा हुआ होए वह पुल्ली कसी जाए, और उन्हीं के हिसाब से कहे कि स्पीड के भी पुल्ली बहुत ज़्यादा नियंत्रण करत है। जितना भी आप साइकिल के एक उदाहरण ले लें कि पीछे चौकियों पर लोड रहा था तो ऐसे वो पुल्ली छोट रहा थे, वो स्प्रॉकेट छोट रहा था, और जौने पर चेन आप पैडल मारा थे ऊपर ज़्यादा रहा था। तो एहमा जौन भी वो होए ओका यथा स्थिति अगर कटा है घिसा है या किसी भी तरह का वो है ढीला है तो उसको भी सही ही रखना चाहिए।
1: कहे का मतलब ये बात है कि मशीन का जो ताव तरह का है जो वैज्ञानिकता है
0: जी
1: वह कार्य व्यवहार करे की जरूरत है, अपने तरफ से छोट बढ़ करे से नुकसान हो
0: बिल्कुल,
1: मशीन
0: बिल्कुल,
1: का भी
0: बिल्कुल,
1: और काम पर भी असर
0: पड़ता। बिल्कुल भैया, अब शैफ्ट भी लगा हो तो शैफ्ट वो है लोहा जो होने पर पुल्ली आप कसा, चाहे वो पंखा बंधा हो, तो शैफ्ट का भी देख लें, कबो कबो ये होते कि कट जात है तो वो थोड़ा हीलत रहा था अगल बगल, वो वाइब्रेशन जेका कहा था
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो ओके वजह से भी नुकसान हो सकत है। और यहाँ तक हो सकत है कि अगर शैफ्ट कटिग या वो झोल मारत मारत वो ढीला कह सकत है हर आइटम का, और हमें नुकसान हो सकत है। तो वह में जो बियरिंग लगी हो ओकर जांच कर लें, अगर आवाज़ आ रही है तब जरूरी नहीं है। बहुत जने कहा थे अरे हमें आवाज़ आवे, हमारे कहे का मतलब ही कि जब आप यंत्र का प्रयोग शुरू करें वहाँ एक दाइयों का चलाई के अलग से देख लें, अगर इस तरह का कोनो बात है तो उसका दुरुस्त कर लें, अन्यथा वहाँ गिरीस तेल लगा के तब चलावें।
1: और एक बात भैया जो ना आप कहें कि जोने समय में कल पुर्जा के इस्तेमाल हो की बाटे यंत्र के इस्तेमाल हो की बात वहाँ समय में ओकर दुरुस्तीकरण रह चाहिए और सामान रखा और निकारे के पहले समझता है ना सामान का अच्छे से भाई ओका जो कहा जाए ओवर हॉलिंग कर लें,
0: बिल्कुल भैया
1: ओकर कील कांटा सब दुरुस्त कर लें,
0: हाँ तब ओकर अच्छी उपाय। अभी तरह भैया आपके दवाई छिड़काव के खातिर स्प्रेयर आवत है, डस्टर आवत है, ऊहू में नाजल होते है, वाशर होते है, ये सब अगर सही न रही तो काम बढ़िया न होई, टाइम ले ही खर्चा कराई, तो ऐसे स्प्रेयर डस्टर या इस तरह के कौनो भी चीज़ होए ओमा जो नाजल लगा होए, वाशर लगा होए, स्प्रेयर लगा होए, ओकर सबके भी ठीक से देख के ओकर साफ़ सफाई
1: साफ सफाई कर लें भाई।
0: हाँ
1: और हम समझी थे कि भैया एक साथ साथ जितना भी यंत्र हैं अगर इनका रंगाई पुताई भी कर दें
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: बारिश में जो नमा जंग लग जात है मोर्चा लग जात है उससे बचाव हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे प्रयोग अगर ख़त्म हो गया है तो हम यह कहा कि धूल मिट्टी साफ करके उसके बाद

0: जैसे आप बताएं कि हम तेल वगैरह डाल दें, पेंट कर दें, उसके बाद कोनो छायादार स्थान में रखें, काहे कि नमी, धूप और धूल ई भी कबो कबो जंग लगा सकत हैं, कबो और कोनो नुकसान दे सकत हैं, तो ऐसे ओका ऐसा स्थान पर रखा जाए जैसे हो जाए। लेकिन एक खातिर एक चीज़ कहा भैया कि मरम्मत करे वाले जो सामान्य औजार हैं जोने का कि हम प्रयोग कर सकी थी, चाहे वो पेचकस हो, चाहे हथौड़ी हो, चाहे प्लास हो, यह तरह के औजार रिंच हो, एका सब अपने ही या एक ठो टूल बॉक्स जरूर बनाए के किसान भाई लोग रखें,
1: डब्बा बक्सा हाँ, भाई रख लें तो वो पड़ा रहा तो मैं और समय पे मिल जाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सिंह साहब, आप कार्यक्रम में आए, बहुत बढ़िया जानकारी देना, आप बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप कृषि यंत्रों के रखरखाव में ध्यान देने योग्य बातों पर लाल राजेंद्र प्रताप सिंह से शैलेंद्र प्रताप सिंह की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर विष्णु बलि मिश्र की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है मानसिक तनाव और अवसाद का आयुर्वेदिक उपचार।
1: मानसिक तनाव एवं अवसाद, ये एक ऐसी समस्या है जिससे गाहे बगाहे हर व्यक्ति पीड़ित होता है, और ये देखने में आता है कि तमाम लोगों के कारण तो अलग अलग होते हैं, लेकिन मानसिक तनाव या अवसाद से सब कभी न कभी ग्रस्त रहते हैं। WHO का एक डाटा है कि लगभग 90% जनसंख्या कभी न कभी किसी न किसी रूप में मानसिक अवसाद अथवा तनाव से पीड़ित रहती है। अब हम ये देखेंगे कि इसके कारण क्या है। आजकल डिमांड और सप्लाई में थोड़ा डिफरेंस हुआ है। डिमांड और सप्लाई में अंतर का मतलब यह हुआ कि जितनी आवश्यकता व्यक्ति की है और जितनी आवश्यकता वो पूर्ति करने में सक्षम है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। आदमी अति महत्वाकांक्षी है, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की आशा रहती है या कोशिश रहती है। इसके चक्कर में वो जो मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, सही समय पे भोजन करना, सही समय पे पॉटी करने के लिए जाना, वो इन सब चीज़ों से अपने आप को वंचित कर लेता है और यह उसका ये सब चीज़ें डगमगा जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो मुद्दा ये है कि पहले हम होने वाले कारण पे बहुत फोकस करना चाहिए कि ये हुआ क्यों। तो होता इसीलिए है क्योंकि डिमांड और सप्लाई, यानी जितनी आवश्यकता है और जितनी वो आवश्यकता पूरी कर पा रहा है, दोनों में काफ़ी गैप है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि आप अति महत्वाकांक्षी ना बने, अपने मेरिट, अपने गुणों को पहचाने और उसके हिसाब से ये सोचे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जब हम इसके लक्षणों के ऊपर चर्चा करेंगे तो मानसिक अवसाद या तनाव में के जो लक्षण हैं, सामान्यतया इसमें व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि उसको उलझन है, बेचैनी है या घबराहट महसूस होती है, उसको कभी कभार सिरदर्द हो सकता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, कई बार वो अकेले उसकी रोने की भी इच्छा करती है, वो अकेले रहना पसंद कर सकता है, उसको बंद कमरे में रहना, अंधेरे में रहना उसको ज़्यादा पसंद आता है, वो सोशली कट ऑफ हो जाता है, वो कोशिश यही करता है कि वो अकेले रहे और उससे कोई जो सोशल गैदरिंग होती है, सामाजिक जो समारोह होते हैं उसमें भी वो जाने से बचता है, अपने जो नाते रिश्तेदार होते हैं उनसे भी उसको कोई विशेष लगाव नहीं रह जाता है, और वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत व्यस्त है, जबकि हकीकत यह है कि उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है सराउंडिंग में, यानी कि उसके चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो ये सोचता है कि जो हो रहा है होने दो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी नाड़ी परीक्षण जब कोई आयुर्वेद का वैद्य करता है तो ऐसे मरीजों में ये भी देखा जाता है कि उसकी जो प्रति मिनट नाड़ी की दर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है और कई बार 100 के ऊपर भी उसकी हृदय की धड़कन रहती है। इसके आयुर्वेदिक उपचार बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा मानसिक अवसाद और तनाव का आयुर्वेदिक उपचार बताया गया है। आयुर्वेद में धारणी वेग बताए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे वेग होते हैं जिनका धारण करना चाहिए, यानी कि उनको शरीर से बाहर नहीं आने देना चाहिए। उसमें है जैसे काम है, क्रोध है, तो आपको गुस्सा आ रहा है तो कोशिश करके उस पर नियंत्रण करें। आयुर्वेद यह कहता है, इसको धारणी वेग इसीलिए कहा गया है। आयुर्वेद की जो बेसिक फिलॉसफी है वो यही

0: है कि पहले वो बीमारी को होने नहीं देता है। तो वो ये कहता है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, यानी किसी भी बीमारी के संक्षिप्त चिकित्सा है कि पहले होने वाले कारणों को दूर करें। अगर आप समय से नहीं सो रहे हैं तो समय से सोने की कोशिश करें, प्रातः समय से उठकर कुछ व्यायाम शारीरिक श्रम करने की कोशिश करें, योगा करें, थोड़ा सा ध्यान अथवा मेडिटेशन करने की कोशिश करें। और जो औषधियां हैं, औषधियों में जैसे अश्वगंधा है, शतावर है, वचा है, इनका सेवन करें। तगर की गोली भी मिल जाती है, तगर की गोली भी आप एक गोली दो गोली सुबह शाम ले सकते हैं, और इससे जो मानसिक अवसाद या तनाव है उससे आपको राहत मिलेगी।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप डॉक्टर विष्णु बलि मिश्र की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था मानसिक तनाव और अवसाद का आयुर्वेदिक उपचार। इसके साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात 9:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है, प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और अब लीजिए सुनिए प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा 7:00 बजे और 7:10 पर फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 बजे, 12:15 बजे और 10:30 बजे पंडित प्रेम कुमार मलिक का ध्रुपद गायन सुनाया जाएगा आपको। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की होगी। और साथ ही 9:00 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप 9:50 पर पोमेला नंदी के स्वर में गाए भजनों का आनंद लेंगे।

सुबह 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। दिन में 11 बजे एक ही कलाकार कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनेंगे आप दोपहर 12:30 बजे, प्रस्तुति मधु कुमार की है। दोपहर 1:15 बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में परंपरा और आधुनिकता में कैसे बनाएं संतुलन, साथ ही पीरियड लीव सही या गलत पर होगी चर्चा। मेरा हुनर मेरा व्यवसाय में मसाले बनाने का व्यवसाय पर होगी बात, और सेहत ज्ञान में प्रोटीन युक्त हो नाश्ता। गृहलक्ष्मी टिप्स में आज आपको बताया जाएगा चाय के दाग छुड़ाने के घरेलू उपाय पर। दोपहर 2:30 बजे लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे भरतलाल साथी, नीलम शर्मा और रामप्रसाद साथियों, और इन साथियों के स्वर में आप सुनेंगे गाए हुए लोकगीत। शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में बात होगी मधुमक्खी दिवस पर, प्रेरणा पुंज में सुमित्रा नंदन पंत पर होगी चर्चा। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में चर्चा होगी तेज धूप से बचें, खुद को हाइड्रेट कैसे रखें, और रामप्रसाद साथियों के स्वर में गाए लोकगीत का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम होगा पंचायत घर। शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे, प्रसारण प्रयागराज केंद्र से किया जाएगा और प्रस्तुति नेहा गुप्ता की होगी। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में

आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और अब बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्ध कला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 370+879,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रे स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं

0: च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं सार्धसप्तवादने कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं सुबह के 7 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं पंडित राजन साजन मिश्रा और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

आज से आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के सातवें तथा अंतिम सोपान उत्तर कांड का संगीतबद्ध पाठ। मयूर कंठ की हरित आभा वाले नीलवर्णी शोभाधाम पीताम्बरधारी धनुष्वाण धारण करने वाले रघुकुल मणि की वंदना का पद है प्रारंभिक श्लोक। भक्त कवि ने भगवान शंकर का वंदन भी किया है जो भक्तों को वांछित फल देते हैं, जिनकी कृपा से जीव को विषय वासनाओं से मुक्ति मिलती है। 14 वर्षों की अवधि समाप्त होने में मात्र एक दिन शेष है। अयोध्या निवासी नर नारी, महलों में माताएं सभी उत्कंठित हैं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण अब तक क्यों नहीं आए।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थे पंडित राजन साजन मिश्रा और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं गणपत फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है विशाल मिश्रा ने। अक्षय त्रिपाठी ने इस भजन की रचना की है, विशाल मिश्रा ने ही संगीतबद्ध किया है।

गणपति बप्पा मौर्य। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला भजन लीजिए, सुनिए चार धाम फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है सुरेश कुमार वाटेकर और रविंद्र साय।

बच्चे ने। उदयशंकर पानी की रचना है, सुरेंद्र कोहली ने इस भजन को अपने संगीत से सजाया है और ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

0: रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन कल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला मंच बताया। श्री योगी ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 98.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। एक रिपोर्ट।
2: यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय राज्य में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी सहित कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार देश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट

0: के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की

0: या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। श्री गांधी ने रायबरेली में PSC के 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद आज भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।
0: भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और संबंधित सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। IPL क्रिकेट में जयपुर में हुए मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। कल शाम को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 19 ओवर और एक गेंद पर 3 विकेट खोकर 225 रन हासिल कर अपनी जीत दर्ज कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

श्रोताओं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप पंडित प्रेम कुमार मलिक का ध्रुपद गायन सुनेंगे। राग है नट भैरव और आपके साथ तबले पर संगत किया है, क्षमा कीजिएगा श्रोताओं, पखावज पर हैं रविशंकर उदय और हारमोनियम पर हैं शमशाद अहमद खान।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित प्रेम कुमार मलिक का ध्रुपद गायन सुन रहे थे। राग था नट भैरव। आपके साथ पखावज पर संगत किया था रविशंकर उदयनी और हारमोनियम पर थे शमशाद अहमद खान।

0: इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। दोपहर 1:15 बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में परंपरा और आधुनिकता में कैसे बनाए संतुलन, साथ ही होगी पीरियड लीव सही या गलत पर होगी चर्चा। मेरा हुनर मेरा व्यवसाय में मसाले बनाने का व्यवसाय पर होगी बात, और सेहत ज्ञान में प्रोटीन युक्त हो नाश्ता। गृहलक्ष्मी टिप्स में आज आपको बताया जाएगा चाय के दाग छुड़ाने के घरेलू उपाय पर। शाम 5:15 बजे युववाणी कार्यक्रम में बात होगी मधुमक्खी दिवस पर, प्रेरणा पुंज में सुमित्रा नंदन पंत पर होगी चर्चा। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में चर्चा, तेज धूप से बचें, खुद को हाइड्रेट कैसे रखें, और राम प्रसाद साथियों के स्वर में गाए लोकगीत आप सुनेंगे। शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे, प्रसारण प्रयागराज केंद्र से किया जाएगा, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की है। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की है। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। ये थी जानकारी आज कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की।

सपने वो नहीं जो हमें सुलाते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें जगाते हैं और कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं। APJ अब्दुल कलाम। प्रकृति ईश्वर का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है, इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है।

0: महात्मा गांधी ने कहा कि किसी भी कार्य को कल पर ना टालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो भी करना है आज करें। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov।

0: www.radiomirchi.in. हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं
2: विशाल शर्मा।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
4: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य

0: कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
1: India is accelerating towards universal health coverage.
2: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हो और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
5: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और का इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको का अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
6: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे।

0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to

0: बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: पेश है वजीर आजम के नॉर्वे के दौरे के बारे में एक रिपोर्ट।
2: तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के मुश्तरका मकासद और तसव्वुर का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने भारत नॉर्डिक ताल्लुकात को माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और इख्तराई दिफाई शराकतदारी तक के ले जाने का फैसला किया है। वजीर आजम ने ओस्लो के अपने दौरे में कसीर मुल्की और दो तरफा सरगर्मियों के तहत माहौल के लिए साजगार राहदारी, समुद्री मईशत, जहाजों की तामीर, सेहत, दिफा जैसे मैदानों में नॉर्डिक सरमायाकारी को दावत दी है। भारत ईयू आजाद तजारती समझौते और टेपा मुआहिदे के रोशनी में उन्होंने नॉर्डिक खित्ते के साथ मजबूत तर इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात की भारत की दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले समेत हर तरह की दहशतगर्दी की एक आवाज में सख्त मजम्मत की। वजीर आजम ने भारत नॉर्डिक तआवुन को मजीद गहरा करने के अज़्म को दोहराया। अब अगली भारत नॉर्डिक समिट फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में मुनाकिद होगी। ओस्लो से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद खवातीन को उनकी समाजी व इक्तिसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपए की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम खवातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की पहली तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल खवातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत ये है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स अदा ना करते हों, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हों, या उन्हें रियासत या मरकजी कानूनी पंचायती बल्दियाती मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन न मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 दर्जात की एक फेरिस्त जारी की है। ये फेरिस्त कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मनसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फेरिस्त शाय की है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में पीपी चौधरी की क्यादत में जेपीसी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी एम के दास, डीजीपी डॉक्टर के एल एन राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक मुल्क एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। जेपीसी में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं आलमी सेहत असेंबली में सबके लिए सेहत बीमा, डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है और दिन का टेम्परेचर कई मकामात पर 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हत्ता के रात में भी मौसम गर्म है और कई शहरों में कम से कम

हमारा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आज है 20 मई, आज हम मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। प्रकृति की पहरी हैं मधुमक्खियां। ये प्रकृति की पहरी हैं, संग मिलकर जीना हमें सिखाती हैं। कठिन परिश्रम में ये नहीं घबराती हैं। जी हाँ, मीठा बोलो हर हाल में, खुश रहो मधुमक्खियां हमें सिखाती हैं। चलिए दोस्तों, आज हम अपने प्रकृति की पहरी मधुमक्खियों के बारे में आपको बताते हैं। हमारे भोजन का लगभग 70% फसलें मधुमक्खियों द्वारा किए गए परागण पर निर्भर हैं। एक छोटी सी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में केवल एक चम्मच शहद बनाती है। भाई, शहद की बात चली है तो क्यों ना एक गीत हम आपको सुनवा दें।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001424।
1: नंबर एक बार फिर

0: करें 870-001-4242।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति की पहली मधुमक्खियों की, क्योंकि आज है विश्व मधुमक्खी दिवस। तो हमने पहले आपको बताया कि अपने पूरे जीवन काल में एक मधुमक्खी केवल एक या डेढ़ चम्मच शहद बनाती है, लेकिन इस दौरान वो हजारों पौधों को जीवन देती है। अगर मधुमक्खियां पृथ्वी से गायब हो जाएं, तो वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों का अस्तित्व सिर्फ 4 साल में ही खत्म हो सकता है, और ये सोचने वाली बात है। श्रोताओं, एक मधुमक्खी कॉलोनी में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां होती हैं, और सभी मिलकर रानी मधुमक्खी और छत्ते की रक्षा करती हैं। मधुमक्खियां सिर्फ शहद नहीं बनाती, वे फूलों और पौधों के जरिए प्रकृति के संतुलन को भी बनाए रखती हैं। तो इन नन्ही मेहनती जीवों की रक्षा करिए, क्योंकि ये बचेंगी तभी हम बच पाएंगे। आपको बता दें कि मधुमक्खियां फूलों से मीठा रस इकट्ठा करती हैं, और ये रस उनके पेट के एक खास थैली में जमा होती हैं। छत्ते में आकर वे रस को मोम के खाने में डालती हैं, और अपने पंखों से हवा करके पानी की मात्रा कम करती हैं, और कुछ दिनों के बाद यही रस गाढ़ा होकर शहद बन जाता है। मधुमक्खियां बहुत मेहनती होती हैं और टीम वर्क में काम करती हैं, ये पर्यावरण को भी स्वच्छ रखती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर सन 2017 में पारित एक प्रस्ताव के बाद पहली बार 20 मई सन 2018 को आधिकारिक रूप से विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इस तारीख को चुनने का मुख्य कारण स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोना जंसा का जन्मदिवस है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मधुमक्खी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है। वर्तमान समय में इन परिश्रमी जीवों का अस्तित्व गंभीर खतरे में है, क्योंकि खेतों में हम कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक कर रहे हैं। अंधाधुंध वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण इनके प्राकृतिक छत्ते और भोजन खत्म हो रहे हैं। जलवायु का परिवर्तन, मौसम चक्र में तेजी से हो रहे बदलाव से मधुमक्खियों के प्रजनन और शहद उत्पादन के चक्र को प्रभावित कर रहे हैं। इन जीवों को बचाने के लिए हमें कृषि में जैविक तरीकों को अपनाने की जरूरत है। आसपास बाग और बगीचे लगाएं। मधुमक्खियों को बचाना दरअसल खुद को और अपनी धरती को बचाने जैसा है। तो खुद को बचाइए और अपनी धरती को भी बचाइए। और अंत में श्रोताओं, आप सबके लिए एक सुविचार कि अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। और अब एक गीत आप सबके नाम।

0: श्रोताओं, तो आज का विश्व मधुमक्खी दिवस पर आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। व्हाट्सएप नंबर एक बार पुनः नोट कर लें, 8004926250। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। अब अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की थी। नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉकी फिल्म से। विनीत और सुनिधि चौहान के खूबसूरत सी आवाज़ें हैं और इस गीत की रचना की है समीर ने। हिमेश रेशमिया का संगीत है, आनंद लीजिए इस गीत का।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: श्रोताओं, ये गीत हम लेकर आए हैं जिंदगी रॉक्स फिल्म से और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है अनुष्का मनचंदा ने। मुदस्सर अजीज की रचना है, अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया है। आनंद लीजिए इस गीत का।

0: पापा
1: हम्म,
0: लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: तो यह कार्यक्रम का आखिरी गीत जिसे हम लेकर आए हैं तृष्णा फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वरों से सजाया है उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। रचना है विशाल ददलानी की और विशाल शेखर ने इस गीत को संगीत दिया है।

ये गीत आप टिशन फिल्म से सुन रहे थे और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का।
1: महोबा जिलाधिकारी गजल भरद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा आगामी कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती।

0: जाए। डीएम ने अस्पतालों में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी गहन समीक्षा की। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी और गाली देने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन कर सांसद का पुतला फूंका था और जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर के बाद यह कार्रवाई हुई। सपा सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने दावा किया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और एआई तकनीक के जरिए उनके शब्दों से छेड़छाड़ कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। महोबा जनपद के प्रसिद्ध देसावरी पान को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने राठ रोड स्थित एपीओ जैविक बाजार का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशेष रूप से देसावरी पान से जुड़े नवाचारों को सराहा और पान उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने पर जोर दिया। डीएम ने मयंकता चौरसिया द्वारा स्थापित अच्युतम ऑर्गेनिक एंड हर्बल्स पान प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठान में देसावरी पान से निर्मित मुखवाश, पान लड्डू, पान शरबत, पान चॉकलेट सहित कई आकर्षक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। डीएम ने नवचारों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए बाजार में नई पहचान दी जा सकती है। उन्होंने जैविक सब्जियों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद यहां विक्रय करेंगे तथा जिनके उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वे शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करा लें। महोबा के इस जैविक बाजार में अब तक कुल 12 एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूहों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। यह बाजार नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उद्यान विभाग द्वारा स्थापित हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूज के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। महोबा के जैतपुर में स्थापित यह हाईटेक नर्सरी किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं और किसानों को होने वाले फायदे इस प्रकार है। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूज की बागवानी में कम समय में प्रति एकड़ लाखों रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों और आधुनिक तापमान नियंत्रण प्रणाली से यहाँ हाईब्रिड और रोग मुक्त पौधे तैयार किए गए थे जिससे किसानों को अब अच्छा मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा
1: तरबूज की और खरबूजा की खेती लगभग 1400 हेक्टेयर की जाती है। एक हेक्टेयर में आराम से 3-4 लाख रुपए किसानों को 3-4 महीने मिल जाते हैं। कुछ किसान ने बताया कि 8-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश हैं कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। महोबा जिले में कुल 4,25,310 आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष अब तक 2,79,612 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने शेष पात्र लाभार्थियों से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र लोग जिला अस्पताल के महिला एवं पुरुष आयुष्मान कक्ष सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर आयुष्मान मित्र की सहायता से निशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में CHO, ANM एवं आशा संगिनी द्वारा भी यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आयुष्मान कार्ड बन जाने से जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में इसी महान नुमाइश ग्राउंड के मैदान में एक रोजगार मेले का उद्घाटन किया जिसमें लगभग 200 कंपनियों ने भाग लिया और भारी संख्या में युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सांकेतिक रूप से लगभग 10 युवक युवतियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल रहे। श्री चौधरी ने मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराए जा रहे देश हित और प्रदेश हित के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने गन्ना किसान, गन्ने का भुगतान, सुगर मिल के साथ साथ किसानों की जमकर तारीफ की। चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। श्री योगी ने कहा कि वह कभी जातिवाद के पक्षधर नहीं रहे। मुजफ्फरनगर जिले में

0: बीते एक माह से लगातार आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण कई पेड़ उखड़ कर गिर गए। वहीं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विद्युत आपूर्ति भी जनपद में आंधी तूफान से लगातार बाधित रही। उत्तर भारत की पौराणिक तीर्थस्थली मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ स्थित हनुमत धाम के पीठाधीश्वर स्वामी केशवानंद जी महाराज का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। उनके निधन से तीर्थ के साधु संतों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वामी केशवानंद जी महाराज को हनुमत धाम के प्रांगण में भू समाधि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मुजफ्फरनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण और विद्युत आपूर्ति में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2029 में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं की राजनीति में अधिक भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण से जुड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को 50% से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 22,000 से अधिक वाद प्रकरणों को निस्तारण किया गया। इस दौरान जिला जज ने कहा कि लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का बड़ा माध्यम है। यह त्वरित न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इस दौरान मोटर दुर्घटना के 56 वादों का निस्तारण कर 6,11,00,000 रुपए प्रतिकर प्रदान किया गया। विभिन्न न्यायालयों के 6,190 सामान्य फौजदारी वादों का निस्तारण कर 7,27,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। 33 दीवानी वादों का निस्तारण किया गया। 138 NIA एक्ट के 31 वादों के निस्तारण में 2,97,00,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। राजस्व के 15,876 मामलों का निस्तारण कर 4,54,00,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। विभिन्न बैंकों के द्वारा 384 बैंक ऋण मसलों का निस्तारण कराकर लगभग 5,62,00,000 रुपए का सेटलमेंट किया गया। पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा 64 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुजफ्फरनगर जिले में इस समय स्वय जनगणना का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि 7 मई से प्रारंभ होकर 21 मई 2026 तक होने वाली स्वय जनगणना में जनपद के सभी नागरिक स्वयं की जनगणना पोर्टल पर अपनी सूचनाएं दर्ज कराने का कार्य करें। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले जुटी हजारों महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर संदेश दे दिया कि अब देश की आधी आबादी अपने हक के लिए जाग चुकी है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारे लगाती ये महिलाएं प्रकाश चौक पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं राष्ट्र हित में किए गए आह्वान के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने निजी गाड़ी के स्थान पर मेट्रो का उपयोग किया। कपिल देव ने गोरखपुर से लौटते समय निजी वाहन का उपयोग न करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे से मोदीपुरम तक मेट्रो एवं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के माध्यम से यात्रा कर जनमानस को ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का प्रेरणादायी संदेश दिया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 9:25 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप देश गान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: अपनी आवाज दी थी और मौसीकार रोशन थे। इसी साल 1952 ईस्वी में अली सरदार जाफरी ने पंकज मलिक की मौसीकी में फिल्म जलजला के लिए नगमे लिखे, जिनके बोल ये थे, हम तो गलियों के लाल, मुझे देख कर जब वो मुस्कुराएंगे जीवन नैया बहती जाए। इसके बाद 1953 ईस्वी में जिया सरहदी की हिदायत में बनी फिल्म फुटपाथ के लिए अली सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी ने मुश्तरका तौर पर दो नगमे लिखे, जिनके बोल ये हैं, पहला शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, दूसरा ठंडी पवन चले सांझ ढले। इसके अलावा 1954 ईस्वी में आई फिल्म धोबी डॉक्टर के लिए अली सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी ने एक नगमा लिखा था जिसका मुखड़ा था झिलमिल झिलमिल तारे नील गगन में। 1957 ईस्वी में फिल्म परदेसी के लिए उन्होंने प्रेम धवन के साथ मिलकर नगमे लिखे थे। इसमें एक नगमा इनफरादी तौर पर अली सरदार जाफरी ने लिखा था जो बहुत मशहूर हुआ था। इसके बोल थे, जाओ सिधारो फिर मिलेंगे जाने वाले। 1963 ईस्वी में ख्वाजा अहमद अब्बास की हिदायत में बनी फिल्म शहर और सपना ने सदर जमहूरिया हिंद से गोल्ड मेडल हासिल किया। इस फिल्म में सिर्फ एक ही नगमा शामिल था जिसे अली सरदार जाफरी ने लिखा था। मौसीकार जेपी कौशिक थे और इसके गुलकार अदाकार मनमोहन कृष्ण थे। ये एक तवील नगमा था जिसके चार हिस्से थे, पहला ये शाम भी कहाँ हुई, दूसरा पत्थर का भगवान यहाँ है पत्थर का शैतान, तीसरा पत्थर को आज नई तरह निभाना होगा, चौथा हजार दर ये सब अजनबी है मगर। 1964 ईस्वी में मौसीकार जेपी कौशिक के लिए एक मरतबा फिर अली सरदार जाफरी ने फिल्म हमारा घर के लिए नगमे लिखे, जिसमें चले हवा पुरवाई उषा जगमग जगमग आई बहुत मकबूल हुआ। और बाद अजा 1965 ईस्वी में आसमा महल के लिए तीन नगमे लिखे जिसके मुखड़े ये हैं, पहला तूने समझा ही नहीं क्या है हकीकत मेरी, दूसरा खूबसूरत है तेरी तरह शिकायत मेरी, तीसरा लाओ पिलाओ मैं शराबी हूँ। 1980 में ख्वाजा अहमद अब्बास की हिदायत में बनी फिल्म नेक्सलाइट के लिए भी अली सरदार जाफरी ने नगमे लिखे। इसके मौसीकार प्रेम धवन थे। इसका एक नगमा उन दिनों बहुत मकबूल हुआ था, आज अपने लहू में नहाने चले देख लो अपना वादा निभाने चले। इन नगमों के अलावा सरदार जाफरी की कई गजलें भी फिल्मों में शामिल हैं। ज़बानो बयान के एतबार से देखा जाए तो उनकी बेशतर नगमों पर उनकी शायरी की ही तरह इंकलाब एहतजाज का लहजा गालिब है। बेशक ये नगमे मनाजिर के मुताबिक लिखे गए हैं, लेकिन अली सरदार जाफरी ने फिल्म की सिचुएशन का ख्याल रखते हुए नाजरीन और सामईन के साथ अपने लिए भी उनके जरिए ज़हनी तमानियत का सामान फराहम किया है। इसके अलावा उनके नगमों में फिल्मी तकाजों के पेश नजर वो तमाम चीजें बतमामो कमाल मौजूद हैं जो एक नगमा और फिल्म की मकबूलियत का सबब बनती हैं। साथ ही उनकी अदबी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनके नगमों में इंकलाब के साथ साथ रूमान नगमगी और जबान का हुस्न देखते ही बनता है। उनके नगमों के चंद टुकड़े मुलायजा हूँ, तूने समझा ही नहीं क्या है हकीकत मेरी, इतनी आशा नहीं है दोस्त मोहब्बत मेरी, जामो मीना के सिवा और भी पैमाने हैं, दर्द दिल दर्द मोहब्बत भी तो मैं खाने हैं, तू न समझा है न समझेगा शिकायत मेरी, इतनी आशा नहीं है दोस्त मोहब्बत मेरी, मुझे वो देख कर जब मुस्कुराएंगे तो क्या होगा, मेरी दुनिया पे बिजली से गिराएंगे तो क्या होगा, मैं उनके सामने आई तो हूँ जी को कड़ा करके, इशारों से जो पास अपने बुलाएंगे तो क्या होगा, मेरी नजरों से घबरा कर वो नजरें खुद झुका लेंगे, झुका कर अपनी नजरें फिर उठाएंगे तो क्या होगा। मुख्तसर ये कि हिंदुस्तानी सिनेमा को हुस्न जबान नाजो अदा गमजा ओशवा इश्क वारफ्तगी उर्दू ही का अतिया है। हिंदुस्तानी फिल्मों का अहद जर्री उर्दू का मरहून मिन्नत है। ये एक मुसलमा हकीकत है कि उर्दू के फनकारों अदीबों और शायरों ने हिंदुस्तानी फिल्मों के फिक्रोफन की आबियारी अपने खूने जिगर से की है और इसे बुलंदियों तक पहुंचाया है। बॉलीवुड से वाबस्ता कोई भी फनकार इसकी तरक्की में उर्दू की अहमियत किरदार से रूगर्दानी नहीं कर सकता। नगमा निगारों की एक तवील फहरिस्त है जिसमें अख्तरुल ईमान, जानिसार अख्तर, मोहिन हसन जज्बी, हसद जयपुरी, साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी, शहरियार, खतीर शिफाई, कैफी आजमी, मजू सुल्तानपुरी, निदा फाजली, गुलजार और जावेद अख्तर वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। इन शोरा ने अपने फिक्रोफन से अदब और फिल्म दोनों को बुलंदी अता की। अली सरदार जाफरी भी इनमें से एक हैं। फिल्मों में उनके नगमों की तादाद जरूर कम है, लेकिन जितनी भी है उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता।
1: अली सरदार जाफरी बतौर नगमा निगार, अभी आपने इस मौजू पर डॉक्टर मोहम्मद अफजल की तकरीर सुनी और अब कलाम शायर के तहत समात फरमाइए डॉक्टर तालिब इकराम से उनका कलाम।
2: गजल

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज की कलाकार मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश, इनके स्वर में। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 9:50 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं पामेला नंदी। आज आप इनके स्वर में गाए गीत और भजनों का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले पामेला नंदी के स्वर में हम आपको सुनवाते हैं ये भजन।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और आज की कलाकार हैं पामेला नंदी। और पामेला नंदी के स्वर में लीजिए सुनिए ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप पौमेला नंदी के स्वर में गाए गीत और भजन का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 10 बजने वाले ही कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।

0: की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। ध्वनिताल के तरंगों पर मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं। आपका कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, सभी सुधी श्रोताओं को नीलम श्रीवास्तव का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर सेल्फ इमेज और रियलिटी का अंतर क्या है। भाई, सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई अपनी फोटो, अपनी दैनिक दिनचर्या भी शूट करके डाल देता है और बहुत से लोग उससे प्रभावित भी होते हैं और आपको बताऊं तनाव में भी आ जाते हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर दिखने वाली आत्मछवि और वास्तविकता के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है।

0: ऑनलाइन दुनिया केवल वही दिखाती है जो वो लोग दिखाना चाहते हैं। जबकि असल जिंदगी में हर किसी के पास संघर्ष, कमियां और सामान्य दिनचर्या होती है। इन दोनों के बीच के अंतर को प्रमुख बिंदुओं से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। पहला, चुनी हुई झलकियां। सोशल मीडिया पर लोग केवल अपनी बेस्ट तस्वीरें, उपलब्धियां, छुट्टियां और खुशहाल पल ही शेयर करते हैं। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। आप बताइए, आप हर वक्त खुश तो नहीं रहते होंगे, कभी दुखी भी होते होंगे, जीवन के संघर्ष से जूझते भी होंगे जो स्क्रीन पर कभी नजर नहीं आती। भाई बातें तो बहुत हो गई, अब मुझे लगता है एक गीत आप सबको सुनवा दूं। क्या कहते हैं श्रोताओं आप? प्रयागराज बदल रहा है।
1: Yeah, come on, make way for my man. That's right. Check it out, yo. Come on, play, play on. What? Come on, make way for the realest hustler. Y'all know that we keeps it gangster. Folks know that we got flow. Everything we do, say we got dope.

0: महबूबा एक उधर अरे किधर, दोनों की फितरत है जान लेना, कौन सी साली मौत ज्यादा मजा देती है, बस ये देखना है।
1: तांबे
0: तू कौन सी मौत मरेगा रे?

श्रीतों, सोशल मीडिया भी कुछ ऐसा ही प्लेटफॉर्म है कि लोगों के होश उड़ा रहा है। सोशल मीडिया पर एडिटिंग, फिल्टर्स और परफेक्ट एंगल का उपयोग करके एक आदर्श और त्रुटिहीन छवि बनाई जाती है। वास्तविकता ये है कि कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं दिखता। हर किसी की त्वचा, बालों और जीवन में कुछ न कुछ कमियां और सामान्य पहलू होते हैं, ठीक है। पर जब लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं तो वो अपनी सामान्य जिंदगी की तुलना उस झूठी दुनिया से करने लगते हैं और ये तुलना अक्सर हीन भावना, चिंता और अवसाद का कारण बनती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया हजारों लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स के बावजूद लोग वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव से दूर होते जा रहे हैं। आप बताइए, क्या आपका जीवन लाइक और कमेंट्स से जुड़ा है? नहीं ना, तो इस अंतर को समझिए।

श्रोताओं, सोशल मीडिया पर लोग इतने एक्टिव हो गए हैं कि अपनों से दूर हो गए हैं। वास्तविक रिश्ते और गहरी दोस्ती स्क्रीन से बाहर आमने सामने के संवाद और भरोसे से बनते हैं। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन का साधन माने और अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना कभी भी दूसरों की सोशल मीडिया की बनाई हुई काल्पनिक दुनिया से ना करें। सोशल मीडिया पर जो दिखता है बनावटी, दिखावटी और समयबद्ध होती है ताकि वो दूसरों को प्रभावित कर सकें। भाई, आपकी जिंदगी लाइक और कमेंट से थोड़े न चलती है, तो आप उसे बस अपने मनोरंजन के तौर पर देखिए। जैसे आप फिल्मों को देखते हैं, क्या 3 घंटों का जीवन है? नहीं ना। तो इस अंतर को समझिए और आप जो हैं, आपके रिश्ते जो हैं, आमने सामने के बातों और व्यवहारों से बनते हैं। अपनी समझदारी का प्रयोग करें और ये मानना बेहद ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चमकती हुई चीज़ हकीकत नहीं होती। यह एक डिजिटल एल्बम की तरह है जहां केवल अच्छी यादें सजोई जाती हैं। सोशल मीडिया से समय समय पर ब्रेक लेना मानसिक शांति के लिए बेहद ज़रूरी है।

सोशल मीडिया से जब आप दूरी बनाएंगे तभी ये गीत गुनगुना पाएंगे। खुद से प्यार करें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और वास्तविक जिंदगी में संतुष्ट रहने की आदत डालें। सोशल मीडिया केवल एक खिड़की है जो किसी की जिंदगी का केवल एक छोटा और सजावटी हिस्सा दिखाती है, पूरी हकीकत नहीं। वास्तविक खुशी इस दिखावटी दुनिया से बाहर अपनों के साथ असल जिंदगी जीने में ही है।

तो श्रोताओं, वॉइस ऑफ प्रयागराज में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। अब अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की थी। श्रोताओं, बाय बाय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला

0: राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
1: जी
0: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी श्रोताओं कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओं अपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
1: जी
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
1: जी
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है, कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: 8800-4400-559 यानी हमारे IVRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.

0: produced by Vimlesh Chaudhary. Dear friends, if you want to give your feedback on our programs, you are most welcome. Contact us on our toll-free number 8800440559. We may be contacted as well on our email address. Our email ID is audio@ciet.nic.in. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम दिक्रो और अब सुनते हैं कार्यक्रम एक पौधा राजू का।
1: इस कार्यक्रम में एक बच्चे के बारे में मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि कैसे उसने एक पौधा लगाया, उसकी देखभाल की और अपने मित्रों को भी उसने पौधा लगाने के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी।

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते एक पौधा लगाओ?
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा, तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: हूँ मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा
2: जी।
0: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें।

श्रोताओं नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं वंदना श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कहा जाता है कि सिनेमा में सिर्फ कहानियों का आईना नहीं बल्कि इंसानी जज्बातों का एक ऐसा खूबसूरत कोलाज है जिसमें हर रंग जिंदगी का होता है। और जब बात भारतीय सिनेमा में भव्यता, रिश्तों की महान बुनावट और रूह को छू लेने वाले संगीत की हो तो एक नाम जहन में सबसे पहले उभरता है, करण जौहर का। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों को एक नया कलेवर दिया बल्कि भावनाओं को सुरों के धागों में पिरोकर हमारे दिलों तक पहुंचाया। आज का ये महफिल उन्हीं के नाम। आइए इस सफर का आगाज करते हैं उस नगमे से जिसने मोहब्बत की एक नई परिभाषा लिखी, साल 1998, फिल्म कुछ कुछ होता है।

श्रोताओं, परंपरा, प्रतिष्ठा और परिवार, ये वो तीन स्तंभ हैं जिन पर करण जौहर ने अपने सिनेमा की भव्य इमारत खड़ी की है। साल 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं थी, बल्कि वो एक उत्सव था भारतीय संस्कारों का। इस फिल्म का शीर्षक गीत जब लता मंगेशकर की मखमली आवाज में गूंजता है तो आंखें नम और दिल अपनों के करीब हो जाता है।

श्रोताओं, वक्त की रेत लगातार हाथ से फिसलती जाती है और पीछे रह जाती हैं सिर्फ यादें। करण जौहर के प्रोडक्शन और लेखन की एक और नामयाब पेशकश थी कल हो ना हो। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि जो पल आज पास है उसे जी भर के जी लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। सोनू निगम की जादुई आवाज और जावेद अख्तर साहब के दार्शनिक बोल जो आज भी हर डूबते दिल को एक नई उम्मीद देते हैं, आइए सुनते हैं जिंदगी के इस फलसफे को बयां करता हुआ ये मुकम्मल नगमा।

श्रोताओं, करण जौहर के सिनेमा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो भारतीय संस्कारों को आधुनिकता के साथ बड़े ही सलीके से पेश करते हैं। सूफी रंग हो या शादी की रौनक, उनके संगीत में हर उत्सव का एक अपना सुर होता है। हाल के ही वर्षों में उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए चार्टबस्टर गानों की एक लंबी कतार खड़ी कर दी है।

श्रोताओं, रिश्तों का ताना बाना, मोहब्बत के रंग और सुरों की ये मखमली चादर, यही तो है करण जौहर का सिनेमाई संसार। आज के सफर में हमने उनके कुछ चुनिंदा सुरीली सौगातों को महसूस किया। उम्मीद है सुरियों की ये महफिल आपके दिल के करीब रही होगी। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। वंदना श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए।

अभी आप उदित नारायण और महालक्ष्मी को सुन रहे थे, फिल्म थी दिल से। और अब कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को सुनिए, फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

और अब नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में सुनिए आनंद बख्शी की रचना। फिल्म का नाम है परदेस और आवाजें चित्रा और शंकर महादेवन की।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कॉलिसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीति

0: आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर, जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, PM Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. They said the partnership is acquiring a new dimension by combining the economic dynamism, societal creativity and centuries-old civilizational wisdom of both nations. The two leaders said their cooperation reflects a shared understanding that prosperity and security in the 21st century will depend on the ability of nations to innovate, manage energy transitions and strengthen strategic sovereignty. Defense Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart An Ju-bak in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defense, defense industry, and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability,

से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात में 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर और रात में 10:30 पर सुनिएगा पंडित प्रेम कुमार मलिक का गायन। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30 पर। दिन में 1:15 पर बहने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में मेरा हुनर मेरा व्यवसाय में मसाले बनाने का व्यवसाय के बारे में जानेंगी और सेहतनामा में प्रोटीन युक्त हो नाश्ता के बारे में सुनेंगी। दिन में 2:30 पर पहले सुनिएगा भरत लाल और साथियों के गाए लोकगीत, उसके बाद नीलम शर्मा के गाए लोकगीत आप सुनेंगे और कार्यक्रम के अंत में रामप्रसाद और साथियों के गाए लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। बोलते नगमे प्रोग्राम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर और हमारा सबरस कार्यक्रम होगा रात में 8:30 पर। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित प्रेम कुमार मलिक का गायन। प्रस्तुत है राग मुल्तानी में ध्रुपद। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित रविशंकर उपाध्याय।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित प्रेम कुमार मलिक से राग मुल्तानी में ध्रुपद सुन रहे थे। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे पंडित रविशंकर उपाध्याय। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश। पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र से हेलो फरमाइश कार्यक्रम और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं जैसारिया प्रयाग बात कर रहा हूं।
0: जी नितीश जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: हस्ती संकला में गाने बोले तेरी कसम ऐसे गाने बोले।
0: अच्छा अच्छा हाँ ये उदित नारायण ने गाया है गाना तो आपकी इस पसंद को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं ये गीत। कहना

0: फरमाइश, कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: अमित।
0: अमित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: प्रयागराज से।
0: कहाँ से?
1: प्रयागराज, इलाहाबाद
0: जी। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तेजाब फिल्म का ये सो गया ये जहां।
0: सो गया ये जहां, सो गया आसमां जी। नितिन मुकेश, अलका याग्निक की आवाज में ये गाना है
1: जी।
0: बहुत दिनों बाद इस गीत की फरमाइश किसी ने की है। अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हैं?
1: जी, प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं।
0: तो आपने इस कार्यक्रम में तो पहली बार लगता है फोन किया है?
1: नहीं, दूसरी बार किया है, अभी किया था हमने 14 अप्रैल को।
0: अच्छा अच्छा, तो अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का तेजाब फिल्म का ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं तुलसीदास प्रयागराज से नेत्रहीन आदमी बोल रहा हूँ, सेवानिवृत्त कर्मचारी
0: जी। तुलसीदास जी,
1: मुझे आपका फोन लगाता हूँ लेकिन जल्दी लगता नहीं। आज कभी संजोग होता है जो मिल जाता
0: जी जी जी देखिए, आज मिल गया, हमारी आपसे बातचीत भी हो रही है।
1: अनारकली पिक्चर का कोई गाना अपनी मर्जी से सुना दीजिए।
0: अच्छा, अनारकली फिल्म के गाने तो बहुत अच्छे थे, इसमें से हम एक गाना आपको
1: तो
0: सुनवाते हैं।
1: अच्छे सभी हैं जी, पुराना गीत जो आपके पास हो वो सुना दीजिए।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं अनारकली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गाँव सत्या मोटी जिला प्रतापपुर से।
0: जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम विवाह फिल्म का।
0: गाने के बोल भी बताइए।
1: हमारे शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते चार। पापा
0: तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं विवाह फिल्म का ये गाना।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ नमस्ते मैडम, मैं प्रयागराज संगम नगरी हवलिया झूंसी से महेंद्रनाथ कुशवाहा बात कर रहा हूँ।
0: जी महेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: आंखें फिल्म का मैडम, मिलती
0: जी
1: है जिंदगी में मोहब्बत करने की मोहलत सभी का। जी
0: जी जी ये बहुत पुरानी पुराना गीत आपने चुना है,
1: हाँ
0: आंखें
1: मैडम,
0: फिल्म
1: हम
0: का।
1: पुराने गाने के शौकीन है ही हैं, बहुत
0: जी
1: पुराने 84 से सुन रहे हैं जब आकाशवाणी प्रयागराज भी भारती,
0: जी
1: तो
0: जी
1: हमको पुराने गाने ही अच्छे लगते हैं। आराधना भी देखते हैं, नमस्ते प्रयागराज भी देखते हैं, और शाम को धरती के गीत आते हैं, 5 बजे दुयुबाड़ी भी आता है,
0: जी जी
1: पंचायत घर, सब सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं करीब करीब।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप
1: और
0: आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम सुनते हैं।
1: हाँ थोड़ा नाम ले लें मैडम बच्चों
0: हाँ
1: का,
0: हाँ ले लीजिए।
1: शुभम कुमार कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा और दीपिका कुशवाहा।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का ये गाना, लीजिए
1: ठीक
0: सुनिए।
1: मैडम, नमस्ते।
0: नमस्कार।

अभी आप हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे थे। पेश कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए।

0: देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. Defence Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart Ahn Ju-bak in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defence industry and strategic cooperation, with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defence cyber cooperation. The MOU was exchanged between the National Defence College of India, the Korea National Defence University and the UN Peacekeeping Corporation. India has taken another important step towards strengthening its indigenous defence capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, has successfully completed the final development trials of the unmanned aerial vehicle-launched precision-guided missile, marking a significant achievement for the country's defence sector. The trials were conducted in both air-to-ground and air-to-air modes at the DRDO test range near Kurnool in Andhra Pradesh. The missile was developed by Research Centre Imarat, Hyderabad, in collaboration with other DRDO laboratories. Developed entirely within the country, the project highlights the growing strength of India's domestic defence manufacturing ecosystem with the participation of MSMEs and private industries under the Atmanirbhar Bharat initiative.

0: इंसान ही ऊंचाइयों को छू पाता है, जो परंपरा को समझे वही आधुनिकता निभा पाता है। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ मैं रितंद्रा मिश्रा
1: और मैं गुंजन शर्मा
0: का स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हमारे जो सम्मानित श्रोता हैं जो आज रेडियो से इस समय गुंजन जुड़ गए हैं, तो मैं आप सभी का जो ये पसंदीदा कार्यक्रम है गृहलक्ष्मी, उसमें स्वागत करती हूँ।
1: जी हाँ, और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसमें घर की हर पीढ़ी और हर समाज से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे परंपरा और आधुनिकता में कैसे बनाए संतुलन।
0: बिल्कुल बहनों, समय बदल रहा है, तकनीक बढ़ रही है, सोच भी बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है, लेकिन इस बदलाव के बीच एक सवाल अक्सर सामने आता है कि क्या आधुनिक बनने के लिए परंपराओं को छोड़ना जरूरी है। और दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि परंपराएं ही हमारी पहचान है, इसलिए उसे बदलना नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए, है ना?
1: तो फिर आखिर सही रास्ता है क्या? क्या परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर दोनों मिलकर जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं?
0: गुंजन, देखो विषय तो बहुत व्यापक भी है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना, तो परंपरा हमें हमारी संस्कृति, संस्कार और जड़ों से जोड़ती है। वही आधुनिकता हमें नए विचार, नई तकनीक और

0: आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है।
1: आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यदि परंपरा हमें संस्कार देती है तो आधुनिकता हमें विकास का मार्ग भी दिखाती है। लेकिन समस्या तो तब शुरू होती है जब हम किसी एक को ही पूरी तरह से सही और दूसरे को पूरी तरह गलत मान लेते हैं।
0: बिल्कुल, और इस पे हम देखो चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात और भी है कि देखो आज की जो युवा पीढ़ी है वो तकनीक से जुड़ी है।
1: हाँ,
0: मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई है और डिजिटल दुनिया उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है गुंजन कि त्योहारों की खुशियाँ, परिवार के साथ बैठना, बड़ों का सम्मान और रिश्तों की गर्माहट खत्म हो जाए?
1: नहीं, ऐसा तो खैर बिल्कुल नहीं है। असल में देखा जाए तो आधुनिकता वही है जो इंसान को आगे बढ़ाए लेकिन अपनी पहचान न छीने, है ना?
0: बिल्कुल, और देखो यहाँ पे मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे आज के समय की बात करें, हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो रहन सहन, चाहे भाषा शैली है, चाहे
1: वेशभूषा जो भी
0: जो भी है, या हम अगर अब त्योहारों की बात करते हैं, तो ये एक टकराहट हर घरों में, लगभग परिवारों में देखने को मिलती है कि वो एक जो परंपरा तरीके से
1: चली आ रही है,
0: चली आ रही
1: हाँ,
0: है, जो हमारी दादी करती थी या मम्मी जो जिस तरीके से जो तौर तरीके थे,
1: फिर वो वही विरासत अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सोचती वही
0: फॉलो कर, थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया थोड़ा, तो अब वो जो बैठी है पुरानी पीढ़ी, जो टकराहट है ना ये परंपरावादी सोच की, तो बस इतनी सी है कि वो चाहते हैं कि हम जो जैसे जीते आए हैं और वो ऐसे ही लेकर
1: लेके उसको आगे बढ़ाएं।
0: और जो हमारा नया समाज है, नए बच्चे हैं, डिजिटल के से जुड़े हैं, तो ये उसमें टेक्निक मिक्स कर रहे हैं, लड़ाई कुल मिलाकर यही है ना।
1: बिल्कुल, देखिए हम आधुनिक कपड़े पहन सकते हैं, नई तकनीक अपना सकते हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल भी सकते हैं, लेकिन ये तो सब है ही हमारे साथ, लेकिन साथ ही अपनी भाषा, संस्कृति और मूल्यों को भी बचाकर रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, देखो तुम्हारी बात से मैं समर्थन तुम्हारी बात का करती हूँ, और ये है कुंजन देखो एक उदाहरण भी इसमें, अगर कभी कभी सुना होगा बड़ों से कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, उसकी जो मजबूती है उसकी जड़ों से ही होती है ना, और यही संतुलन हमें सीखना होगा। उदाहरण के लिए अगर हम कुछ बात करें हम आपस में, तो देखो शिक्षा, पहले की शिक्षा का अगर तुम देखो गौर करो तो पारंपरिक तरीके से की जाती थी, लेकिन आज जो है स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जो सीखने का जो तरीका बदल दिया है ना, लेकिन गुरु का जो सम्मान है ना गुंजन, वो शिक्षा का महत्व और ज्ञान का मूल्य आज भी उतना ही जरूरी है। इसी तरह जो है परिवारों को, जैसे शिक्षा का उदाहरण दिया, इसी तरह परिवारों में भी बदलाव आया है और संयुक्त परिवार अब छोटे छोटे परिवारों में बदल रहे हैं, लेकिन यदि रिश्तों में प्रेम, सम्मान और अपनापन बना रहे तो आधुनिक जीवन शैली भी खुशहाल हो सकती है।
1: मतलब है कुल मिला के बात ये है कि अगर हम तालमेल सही से बैलेंस होके सब चलें तो पुरानी चीजें और नई चीजें मिलकर एक नए उद्भव हो सकती है।
0: बिल्कुल, तो हम देखो तालमेल की ही बात कर रहे हैं, तो एक गीत सुन लिया जाए।

0: तो अभी हम गीत से पहले बात कर रहे थे कि एक जो परंपरागत पीढ़ी है और जो अब आधुनिकता से भरपूर पॉजिटिव और सकारात्मकता से जोश से भरी हुई जो पीढ़ी है उन दोनों की तालमेल की, तो दोनों अपनी जगह सही हैं और दोनों की ग्रोथ से ही शायद हमारे देश को
1: बिल्कुल
0: और ज़्यादा तरक्की मिले, लेकिन ज़रूरत है ताल से ताल मिलाने की, है ना?
1: बिल्कुल
0: तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपना आगे कार्यक्रम और बढ़ाते हुए। तो बात ये हो रही थी कि कई बार पीढ़ियों के बीच मतभेद इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि संवाद जो होता है, जो आपसी हमारी एक बातचीत का जरिया होता है, वो कम होता जाता है।
1: और अच्छा गुंजन, आजकल घरों में अगर देखो तो लगता नहीं कि अगर 10-2-3 लोग बैठे भी हैं तो सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते
0: वाकई में होता
1: हैं,
0: ही है। और अगर कोई एक ऐसा बंदा हो जिसका मोबाइल चार्जिंग में लगा हो
1: सही है
0: तो वो तो फिर बस तीनों को देखता रहता है कि आखिर ये लोग किटपिट किटपिट हो क्या रहा है। तो वो उस समय देखिए बड़े उससे बोलता है कि देखो मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है, इसको साइड में रखना चाहिए, बिकॉज उसका लगा है चार्जिंग में तो वो कुछ कर नहीं सकता है। तो बात यही आती है कि संवाद की जो कमी होती जा रही है। अच्छा पहले देखिए दीदी, यही होता था कि अगर चार लोग बैठे हैं तो मान लीजिए एक पेड़ के नीचे ही बैठे या कुर्सियां ही डाल ली और आपस में कुछ नहीं तो बातचीत
1: किसी
0: चल
1: का
0: रही है।
1: परिवार की कोई विषय
0: हाँ
1: पे ही
0: कुछ भी
1: चिंतन
0: विषय
1: चल
0: उठ
1: रहा है,
0: गया, कुछ भी,
1: बिल्कुल
0: बुजुर्ग
1: बिल्कुल
0: लोग हैं, बच्चे हैं, परिवार है, बहुएं हैं,
1: बिल्कुल
0: जो भी हैं। तो बस यही चीज़ है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपसी जो बातचीतें कम होती जा रही हैं तो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना?
1: और बुज
0: और बुजुर्गों को लगता है कि नई पीढ़ी जो है वो इतनी भागम भाग में लगी है कि वो
1: सही
0: हमें भूल रही है, ठीक है? और
1: बिल्कुल
0: युवाओं को लगता है कि ये हमें समझते ही नहीं है, हम कुछ बोलते

0: कोई विषय
1: हाँ
0: पे ही
1: कुछ भी
0: चिंतन
1: विषय
0: कर
1: उठ
0: रहा है,
1: गया, कुछ भी,
0: बिल्कुल
1: बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, बहुएं हैं,
0: बिल्कुल
1: जो भी हैं, तो बस यही चीज़ है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपसी जो बातचीतें कम होती जा रही हैं तो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: और वो
1: और बुजुर्गों को लगता है कि नई पीढ़ी जो है वो इतनी भागम भाग में लगी है कि वो
0: सही
1: हमें भूल रही है, ठीक है। और
0: बिल्कुल
1: युवाओं को लगता है कि ये हमें समझते ही नहीं है, हम कुछ बोलते हैं तो ये हमारी बातों को
0: कुछ सुनते नहीं
1: पुरानी
0: है,
1: बातों से जोड़ के पता नहीं क्या
0: और
1: क्या उपदेश दे
0: बिल्कुल अब हर परिवार में लड़ाई का मुद्दा भी यही रहता
1: बस
0: है
1: तो ऐसा नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे को ये सुनिए, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, और समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं या सामने वाला समझाना क्या चाह रहा है,
0: बिल्कुल
1: बस प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी।
0: बिल्कुल। और देखो सही में ये बात है कि अगर हम परंपरा का अर्थ एक चीज़ है ना कि नई पीढ़ी क्यों टकराहट कर रही है, क्योंकि वो जो नियम है जो बुजुर्ग हमें बताते हैं उनको हम ढोना नहीं चाहते हैं ना।
1: जी
0: और आधुनिकता का अर्थ देखो ये भी है, मैं तो दोनों के तालमेल की बात करूं
1: जी
0: कि पश्चिमी जो जीवन शैली है उसको अपनाना नहीं है ना, मतलब उस इस हद तक ना अपने कि अपनी पहचान खो
1: खो
0: दे,
1: जाए।
0: है ना। तो यदि कोई परंपरा समाज को जोड़ती है, मानवता और नैतिकता सिखाती है, तो मुझे लगता है गुंजन कि उसको जरूर अपनाना चाहिए, है ना। लेकिन यदि कोई पुरानी सोच इंसान की स्वतंत्रता या सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो उससे बदलाव भी जरूरी है। मैं यहाँ तक कहूंगी कि वहां बदल देना चाहिए ना, ताकि वास्तविक संतुलन बना रहे, है ना।
1: बिल्कुल, जहाँ हम अच्छे संस्कारों को संजोए रखें और समय के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव बदलाव को स्वीकार करें। आज महिलाएं देखिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे विज्ञान हो, राजनीति हो, सेना हो, खेल हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र में। ये आधुनिक सोच का जो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, लेकिन साथ ही परिवार के संस्कार, संवेदनाएं और सामाजिक जिम्मेदारियां भी बहुत अपनी जगह इम्पोर्टेंस
0: बिल्कुल
1: रखती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और देखो एक हम बात जब भी करते हैं परंपरा की बात करते हैं तो त्योहार भी आते हैं ना।
1: जी
0: इसका एक सुंदर उदाहरण है कि देखो पहले लोग जो है पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाते थे, अब लोग जो है डिजिटल माध्यम से दूर बैठकर भी रिश्तेदारों को शुभकामनाएं
1: दे
0: देते
1: सकते
0: हैं,
1: हैं।
0: भेजते हैं, या ऑनलाइन हमने देखा है कुछ घरों में पूजा में भी
1: पूजा
0: सम्मिलित हो
1: जी
0: जाते हैं
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल, यानी कि आधुनिकता में परंपराओं को खत्म नहीं किया है बल्कि उन्हें नए रूप में और भी आसान बना दिया है। तो बहनों, संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमें ये समझना होगा कि क्या हमें अपनाना है और क्या छोड़ना है। हर नई चीज़ गलत नहीं होती और हर पुरानी चीज़ सही भी नहीं होती। कभी-कभी अगर आधुनिकता हमें आगे बढ़ना सिखाती है तो जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी परंपराएं हैं, वो हमें इंसान बनाए रखने की सीख देती है।
0: बिल्कुल। और बहनों जीवन में परंपरा और आधुनिकता दोनों ज़रूरी है, मुझे जो लगता है ना आज के समय के अनुसार। तो और एक हमें अपनी ये एक हमें जो है अपनी पहचान देती है तो दूसरी हमें नई दिशा देती है। और यदि हम दूसरी हमें नई दिशा देती है और हमें ऐसा समाज भी देखो गुंजन बनाना है जहाँ तकनीक भी हो और संस्कार भी हो, है ना,
1: जी
0: और नई सोच भी हो और अपनी मिट्टी की खुशबू भी बनी रहे। क्योंकि देखो सच्चा विकास वही है जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ चले और सभी के मन में ये भाव हो, नई उड़ानों का सपना भी आंखों में पलता रहे और संस्कृति का दीप भी दिलों में जलता रहे। किसान की राह में, विकास की राह में जड़ें ना कमजोर हों, ऐसा संतुलन हर पीढ़ी में चलता रहे।
1: वाकई में इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ आइए हम सुन लेते हैं अपना अगला गीत।

0: अच्छा था ना,
1: बहुत
0: और
1: अच्छा।
0: मुंजन देखो
1: हाँ
0: ये गीत की एक हमारी श्रोता बहन है, उन्होंने फरमाइश भी की थी,
1: अच्छा
0: इसीलिए मैंने आज बजाया। और इस सुंदर गीत के साथ देखो मुझे लगता है कि यदि हुनर मेरा व्यवसाय, हुनर अगर पहचान बन जाए तो मेहनत की भी सम्मान बन जाए, है ना।
1: जी
0: और छोटा काम नहीं होता कोई जब आत्मनिर्भरता साथ मिल जाए, है ना। जी हाँ, बात कर रहे हैं हुनर की, तो ऐसे हुनर की जो न केवल आत्मनिर्भर बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार दिलाते हैं। और देखो आज हम बात करेंगे मसाले बनाने का व्यवसाय, है
1: अच्छा
0: ना।
1: बिल्कुल। तो भाई अगर विषय ये है तो जैसे कि हम बात करें तो वाकई में भारत को मसालों का देश कहा जाता है, और हमारे जो भोजन की खुशबू है, स्वाद है या पहचान है वो मसालों से ही बनती है। और हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, जीरा और इलायची जैसे मसाले हर रसोई की ज़रूरत हैं और शान भी
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में मसाले बनाने का व्यवसाय कम लागत में शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: और खास बात यह है कि इस व्यवसाय को महिलाएं, युवा, गृहिणियां छोटे छोटे स्तर से घर से ही शुरू कर सकते हैं, यदि आपके पास स्वाद की समझ, साथ में सफाई और मेहनत का जुनून है तो ये व्यवसाय आपके लिए सुनहरा अवसर बन जाता है। और इसके लिए सबसे पहले अपनी अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे मसालों का चयन ज़रूरी है, जैसे हल्दी है, सूखी है, लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है।
1: बिल्कुल, काफ़ी हैं मसालों की अगर श्रृंखला की बात की जाए तो रसोई में काफ़ी मसाले ऐसे होते हैं, और जैसे कि आपने कुछ नाम तो आपने लिए, बाकी के जैसे कि मसालों का आप साफ़ करके धूप में पहले उसको अच्छी तरह सुखाइए, और फिर जब वो सूख जाएं तो मशीन के या ग्राइंड में उसको पीस करके आप अच्छी तरह से पैकिंग कर सकते हैं। और ग्राहकों को अगर अच्छी तरीके से सूखे हुए मसालों को जब आप पैक करके सोल्ड आउट करते हैं तो वो काफ़ी प्रभावित
0: बिल्कुल,
1: भी करते
0: क्योंकि
1: हैं।
0: देखो आज मार्केट में मैंने देखा कि जो ग्राहक है वो पैकेजिंग पे आकर्षित होता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: तो उस पे भी अगर ध्यान दे तो
1: जी,
0: उनकी अच्छी हो सकती है ना। तो यदि पैक कर या उसका कोई ब्रांड नाम रख दें,
1: नाम है,
0: वजन लिख दें उस पे,
1: मैन्युफैक्चरिंग
0: क्योंकि
1: है।
0: अक्सर लोग, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं ना कि
1: हाँ
0: इसका वजन क्या है या निर्माण तिथि ये कब बना है,
1: उसमें
0: एक्सपायरी तो
1: इंग्रेडिएंट्स क्या
0: नहीं
1: क्या
0: है,
1: चीज़ें पड़ी हैं।
0: बिल्कुल। तो ये लोगों को, इससे एक लोगों का भरोसा भी बढ़ता है, ग्राहक का, है ना। और इसको बेचने के लिए अपन शुरुआत कर सकते हैं आप अपने आसपास के दुकान, बाजार और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और धीरे धीरे आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा। कम पूंजी में शुरुआत, घर से संचालित करने की सुविधा, हर मौसम की मांग भी है इस इन मसालों की, तो महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का मुझे लगता है इससे बढ़िया अवसर नहीं है।
1: नहीं हो सकता बिल्कुल। लेकिन देखिए, किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे कोई भी हो, ईमानदारी और गुण का होना सबसे ज़रूरी है।
0: बिल्कुल
1: मसालों में शुद्धता और स्वाद होगा तो जो कस्टमर्स हैं वो स्वतः ही जुड़ते जाएंगे। हुनर कभी भी छोटा नहीं होता, ज़रूरत होती है उसे पहचानने और एक सही दिशा देने की। रसोई की खुशबू से शुरू हुआ ये छोटा सा प्रयास एक बड़े व्यवसाय का रूप भी
0: बिल्कुल
1: ले सकता है।
0: गुंजन। और देखो हम देखते हैं अपने, हम प्रयागराज की बात करें तो मैं पर्सनली जानती हूँ बहुत सारी महिलाएं अपनी आत्मनिर्भरता को
1: के लिए
0: बढ़ाने के
1: काम।
0: लिए काम
1: हाँ
0: कर रही हैं, और अभी गुणवत्ता की बात की ना, वाकई वो छोटे छोटे घरेलू उद्योग घर से काम कर रही हैं और अच्छा काम कर
1: अच्छा
0: रही
1: काम
0: हैं,
1: कर रहे।
0: आप मुनाफा भी कमा रही हैं, बच्चों को भी
1: और पता
0: पढ़ा
1: है
0: रही
1: फिर
0: हैं।
1: क्या होता है,
0: हाँ
1: आप एक बोलते ना, कारवां तो अकेले शुरू हुआ था, धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, तो
0: बिल्कुल
1: कहीं ना कहीं फिर वो आपके संग जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप साथ में औरों को भी जोड़ते जाते हैं और औरों को भी रोजगार मिलता जाता है।
0: बिल्कुल। और देखो वो कहते हैं ना कि मेहनत की खुशबू जब सपनों में घुल जाती है तभी छोटी शुरुआत सफलता बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: और इसी जानकारी के साथ देखो हमारे पास इंग्लिश में कुछ टिप्स
1: टिप्स
0: है,
1: हैं। हाँ
0: हाँ, तो वो बता दें। ए उसमें गृहलक्ष्मी टिप्स में चाय के दाग छुड़ाने के घरेलू उपाय, वैसे तो हमारी बहनें जानती हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि
1: कुछ
0: हम जानकारी के अभाव में वो चीज़ें
1: चीजें रहे।
0: नहीं जान
1: हाँ
0: पाते। तो बेकिंग सोडा जो आपके घर में भी मौजूद रहता है, अगर दाग वाली जगह पर थोड़ा सा रगड़ कर पानी मिलाकर अगर उसको पेस्ट करें और 10-15 मिनट के बाद
1: जी।
0: उसको साफ करेंगे तो वो साफ हो जाएगा।
1: और इसी के साथ एक और टिप्स है कि नींबू और नमक, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये अमूमन हर रसोई में पाया जाता है। नींबू का रस और थोड़ा नमक, जहाँ पर भी दाग आपका है चाय का है तो वहाँ पे आप उसको कुछ मिनट लगा दीजिए, और उसके बाद धोइए, देखिए आपका दाग काफ़ी हद तक आपका हल्का हो जाएगा।
0: बिल्कुल। और गुंजन आज का जो प्रोग्राम था ना,
1: जी
0: तो आज हम लोग देखो सारे प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं ना,
1: जी
0: और एक चर्चा हमने अभी परंपरा पे की, तो जो नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वो भी महिलाओं की ही समस्या से
1: जुड़ी हुई
0: जुड़ी।
1: है।

0: हुई है, और मैं जो पीड़ा को समझे वही संवेदनशील कहलाता है, और जो समानता दे वही समाज आगे बढ़ पाता है। तो बहनों, आज के समय में समाज, कार्यस्थल और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है पीरियड लीव। तो सही या गलत, इस पे हम आज चर्चा करेंगे, है ना। तो जो हमारा मासिक धर्म है,
1: जी हाँ, जो
0: यानी
1: हम
0: कि
1: पीरियड ये अगर बात की जाए तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके दौरान कई महिलाओं को दर्द है, कमजोरी है, थकान है और मानसिक तनाव जैसी जो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं उनको सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान विशेष अवकाश यानी एक
0: बिल्कुल
1: लीव मिलना चाहिए ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। वहीं जो दूसरी ओर है वो उनका ये कहना है कि इससे महिलाओं को कॉमर्शियल पर अलग नज़र से देखा जा सकता है।
0: बिल्कुल। देखो, अब सवाल ये उठता है कि क्या पीरियड लीव महिलाओं के लिए सहानुभूति और सुविधा का कदम है,
1: जी
0: या फिर ये कार्य क्षेत्र में समानता को प्रभावित कर सकता है। हर महिला का शरीर, देखो, जो
1: अलग
0: मुझे
1: होता है।
0: लगता है अलग-अलग होता
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: कुछ महिलाएं पीरियड्स के दौरान सामान्य रूप से काम कर पाती हैं, जबकि कुछ को अत्यधिक दर्द और असहजता का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यदि किसी को आराम की आवश्यकता है तो उसे, मुझे लगता है कि ये सुविधा मिलनी
1: मिलनी
0: चाहिए, है
1: चाहिए।
0: ना।
1: लेकिन वही चीज़ है ना कि किसी भी कोई बात जब उठती है तो उस पे सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की पहल आती है। तो
0: बिल्कुल
1: कुछ लोगों की चिंता ये भी है कि यदि इस तरह की लीव छुट्टियां अनिवार्य रूप से लागू की जाती हैं तो कहीं भाई ऐसा ना हो कि महिलाओं की भर्ती या प्रमोशन को लेकर भेदभाव बढ़ जाए। इसलिए मेरा तो यूं मानना है कि इस विषय को केवल सही या गलत के भाई रूप में ना देखा जाए,
0: बिल्कुल
1: बल्कि स्वास्थ्य और सम्मान और समान अवसर के एक सकारात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए समझा जाए, है ना। और
0: बिल्कुल
1: कहीं देशों और कुछ कंपनियों में तो पीरियड लीव की व्यवस्था भी शुरू कर दी
0: बिल्कुल।
1: है।
0: देखो, मैं अभी इसी भी बात कर रही थी,
1: अच्छा
0: कुछ दूसरे देशों में भी,
1: जी जी
0: और अपने भारत की बात करें तो कुछ राज्यों में भी ये पीरियड लीव की सुविधाएं हैं
1: दी
0: प्रचलन
1: जा
0: में।
1: रही हैं।
0: हाँ, बिल्कुल। और इससे जो है, देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीरियड को जो है, मैं तो कहूँगी भाई, कभी कभी है आदमी संकुचित स्वभाव का होता है,
1: हाँ
0: बोल
1: हाँ
0: नहीं
1: बोल नहीं
0: पाता है,
1: पाता है।
0: तो शर्म या कमजोरी का विषय भाई न माना जाए।
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इस पर खुलकर और संवेदनाशीलता के साथ बात होनी चाहिए, है ना।
1: जी। और बाकी अगर कहा जाए कि ये मुद्दा केवल छुट्टी का नहीं है बल्कि समय, सम्मान और स्वास्थ्य का विषय है, जरूरत इस बात की कि हर महिला को अपनी स्थिति के अनुसार एक निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सहयोग मिले, क्योंकि एक संवेदनशील समाज वही है जहाँ स्वास्थ्य और सम्मान दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस दी जाती है।
0: बिल्कुल
1: और तब मैं यही कहना चाहूँगी कि सम्मान हो हर भावना का, हर पीड़ा को समझा जाए, समानता की राह में अब संवेदनशीलता भी लाई जाए। तो इसी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी बहनों को सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो भाई इस प्यारे से गीत के साथ हम पुनः अपने कार्यक्रम में लौट आए हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अभी जाने से पहले हम बात कर रहे थे मसालों की, भाई उसकी महक तो चारों ओर जैसे फैलती
1: फैली
0: गई है।
1: रहती है बिल्कुल।
0: वाकई में एक जो रसोई होती है वो हमारी गृह लक्ष्मी की एकदम संपत्ति होती है, उसमें
1: बिल्कुल
0: किसी की कोई खलल नहीं, कुछ भी नहीं उसमें कोई। भाई जब देखिए, जो मैं अगर अपना बताऊं, अगर मैं रसोई में घुसूँ मैं आने नहीं देती, वहीं रहो, वहीं से सूंघो, जब मैं लाऊंगी तो खाना और बताना।
1: बिल्कुल
0: तो बात हो रही है कि अब हम आगे आए हैं, जब रसोई का मुद्दा उठ ही गया है, तो हम लेके आए हैं सेहत ज्ञान, यानी कि आज हमारे सेहत में है प्रोटीन युक्त नाश्ता। वाकई में देखिए, सुबह का जो नाश्ता होता है वो हमारे पूरे दिन भर को तय करता है,
1: बिल्कुल
0: और अगर हमारा नाश्ता रिच होगा, अच्छा होगा, संतुलित होगा, तो हमारे दिन भर के कार्य अच्छे से सब संपन्न हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें प्रोटीन युक्त नाश्ते की, तो कुछ हैं चीज़ें जैसे कि मूंग की दाल का चीला। तो अगर इसकी मैं रेसिपी आपको बताऊं, तो 1 कप भीगी मूंग दाल

0: हरी मिर्च, अदरक, नमक और थोड़ा पनीर, ये आप ले करके इनको, जो आपने दाल ली उसको भिगो लिया आपने, और उसको पीस करके घोल बना लीजिए। उसमें जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो भी सब्जी आप डालना चाहती हैं वो आप डाल लीजिए, उसमें नमक डाल लीजिए और थोड़ा सा पनीर भी उसमें डाल सकते हैं, या आप सेकने के बाद भी ऊपर गार्निश कर सकते हैं या उसको फिल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसा खाना चाहें। उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 10-15 मिनट, तो वो थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाएगा। बस उसके बाद आपका जो पैन है उस पर आप हल्का सा ग्रीस करके घी लगा के उसको उतार लीजिए। और अगर आपके पास पैन नहीं भी है, आपके पास तवा है, तो आप उस पर भी आराम से उतार सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है, लोग बहुत
1: बिल्कुल
0: सोचते हैं भाई पैन तो है नहीं, फ्राइंग तो हम कैसे उतारें, तो आप तवे पे हल्का सा, या तो आप देखिए एक पराठा सेक लीजिए तो उससे वो अच्छे से ग्रीस हो जाएगा, या फिर आप उस पर हल्का सा पानी का छींटा देके उसको उतारेंगी तो बहुत बढ़िया उतरेगा। उसको करके अलट पलट के सेक लीजिए, और फिर उसके बाद आप उस पर या तो पनीर फिल कर दीजिए, या फिर उसको ऐसे ही जब आपने उसमें मिला लिया है तो वो उसमें भी वैसे भी पक जाएगा, बस उसको निकाल लिया। और इस समय जैसे गर्मी का मौसम है तो पुदीने की चटनी बना
1: बिल्कुल
0: लीजिए बढ़िया, अमिया डाल करके, है
1: बिल्कुल।
0: ना, तो उसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। और एक और
1: और ये
0: है,
1: भी है ना कि इसमें देखो प्रोटीन युक्त है ये,
0: जी
1: और मूंग लगभग बच्चे भी खाते हैं, तो
0: खाते हैं
1: बच्चों
0: आराम
1: के लिए भी
0: से,
1: बहुत बढ़िया
0: हाँ बिल्कुल,
1: आहार है।
0: और उनको
1: बिल्कुल
0: तो पनीर भी पसंद होता है,
1: बिल्कुल
0: तो वो थोड़ा, और वो सॉफ्ट भी हो जाता है, आप छोटे बच्चे को भी खिला सकते हैं आराम से।
1: बिल्कुल
0: साथ ही दूसरी रेसिपी है ओट्स और दही, तो इसके लिए आपको ओट्स चाहिए, दही चाहिए और फल चाहिए और चिया या अलसी के बीज। इन सब को आप एक बाउल में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इन सबको मिला करके 5 मिनट रख दीजिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस रख दीजिए, थोड़ा सा सेट होने दीजिए, थोड़ा सा उसको, क्योंकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाए हैं, थोड़ा सा फूलने दीजिए, और बस उसको आप हल्का सा चाहें तो थोड़ा सा फ्रिज में भी रख सकती हैं, तो हल्का सा ठंडा हो जाएगा, और उसको खाइए। तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, आपका
1: बिल्कुल
0: सेहत चुस्त और दुरुस्त रहेगी। तो ये चीज़ें थी, तो अच्छे से खाइए और सबको भी खिलाइए, और साथ ही सुन लीजिए हमारा एक और गीत।
1: गीत।

0: तो भाई ना कजरे की धार और ना मोतियों के हार,
1: कहना
0: वाकई जो आपकी असली
1: सादगी
0: सुंदरता
1: भी है,
0: है।
1: खूबसूरती होती है गुंजन, है ना।
0: हाँ
1: और देखो इसी के साथ ही अभी बहनों से कुछ एक दो मिनट है बात करने की, तो हम लोग कर लें, क्योंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है। देखो हर गर्मी तो हर तरफ है, लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो हर जगह जो है, जो बाजार हैं, चौराहे हैं,
0: जी
1: वहाँ पे आप लोग रुक कर छाँव जहाँ भी देखें, ठेले भी लगे हैं इस समय, तो पानी पी लें, या जो शरबत कहीं मिल रहा है तो उसको भी ले, मौसमी फल हैं उसको
0: हाँ,
1: भी ज़रूर
0: नारियल
1: खाएं, है
0: पानी
1: ना।
0: है वो आपको
1: नारियल पानी
0: डिहाइड्रेट
1: है
0: नहीं होने
1: जो
0: देगा,
1: आपके जो है ड्रहाइड्रेशन को मेंटेन
0: रोकेगा
1: रखेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और देखिए अगर हम पहनावे की बात करें इस गर्मी के मौसम, भाई कई चीज़ें काउंट होती हैं, ऐसा नहीं कि खान पान से ही। अगर हम जैसे बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस गोइंग हैं, तो आप हल्के और साफ कपड़े पहनिए, है ना। कॉटन के कपड़े पहनना मुझे लगता है इस
1: बिल्कुल,
0: समय,
1: क्योंकि उसमें पसीने जो
0: हाँ
1: है वो अब्जर्व कर
0: ऑब्जर्व
1: लेता
0: कर लेता
1: है,
0: है,
1: तो
0: और
1: उसको
0: हल्के
1: ही
0: रंग के
1: पहने।
0: रहते हैं तो वो थोड़ा आपको कम रहता है, और हल्के रंग गर्मी में अच्छे भी लगते हैं, है ना।
1: बिल्कुल। और एक इंस्ट्रक्शन भी है गुंजन की, बहुत सारे लोग जैसे बाहर से गए, इतनी गर्मी पड़ रही है, और तुरंत जाके एसी में बैठ
0: बैठ
1: गए,
0: गए,
1: कूलर में बैठ गए, तो
0: हाँ
1: थोड़ा सा उससे बचाव
0: बचाव
1: करें।
0: करिए। और ये भी
1: हाँ
0: होता है कि जैसे आप ऑफिस में भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको निकलना है बाहर, तो थोड़ी देर निकलने से पहले भी थोड़ी देर अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइए, उसके बाद ही बाहर निकलिए। बहुत टाइट कपड़े मत पहनिए, अपनी जो आपकी स्किन है उसकी साफ सफाई रखिए, दिन में 2-3 बार भाई चेहरा धोइए। नहीं आप भाई ऑफिस में नहीं धो सकते तो

0: वाइप्स करिए।
1: बिल्कुल। और देखो इसी के साथ हमारी ये जो अनाउंसर महोदय हैं इशारा कर रही हैं कि प्रोग्राम का समय हो रहा है समाप्त, तो बहनों से कहते हैं नमस्कार।

अभी बहने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुन रही थी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना

0: की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासेट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में

0: निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार

बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
5: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
5: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
6: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें। प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए भरत लाल और साथियों के स्वर में देवी गीत।

इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म सुर के गाने से। इसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने। गीत के बोल लिखे हैं निदा फाजिले ने और धुन बनाई MM करीम ने।

अब लीजिए सुनिए फिल्म राजी का गीत हर्षदीप कौर, विभा शर्राफ और शंकर महादेवन की आवाजों में। शब्द रचना गुलजार की है, संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: पापा, लाइए 3000।
6: क्यों भाई?
5: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।

0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे यूपीआई से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी। सो टुडे वी टेक यू इनटू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ पोएट्री, ए वर्ल्ड वेयर वर्ड्स बिकम म्यूजिक, इमोशंस बिकम रिवर्स एंड नेचर स्पीक्स थ्रू एवरी लीव एंड ब्रीज। आवर स्पेशल एपिसोड इज डेडिकेटेड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिंदी लिटरेचर, द जेंटल ड्रीमर, द नेचर लवर एंड द शाइनिंग पिलर ऑफ द छायावाद मूवमेंट, सुमित्रा नंदन पंत।
5: पंत जी's पोएट्री इज लाइक द फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट टचिंग द माउंटेन्स, लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स आफ्टर रेन, एंड लाइक द काम विस्पर ऑफ द हिमालयाज। थ्रू हिज राइटिंग्स ही टॉट जनरेशंस टू सी ब्यूटी इन नेचर, ह्यूमैनिटी एंड लाइफ इटसेल्फ।
4: सो स्टे ट्यून्ड एज वी एक्सप्लोर हिज लाइफ, his literary journey, his philosophy and the timeless beauty hidden in his poems.

0: स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। चर्चा का विषय है, यह कार्यक्रम होगा 9:30 बजे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पंचायत घर कार्यक्रम होगा 6:30 बजे, इसमें श्रोता सुनेंगे प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी से नीति वचन। बोलते नगमे यह कार्यक्रम होगा 7:31 पर, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित प्रेम कुमार मल्लिक का धमार गायन आप सुनेंगे 10:30 बजे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर बीएम प्रसाद से की गई बातचीत, नए बाघों की उचित देखभाल। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे डॉक्टर सुमन दुबे की वार्ता, चर्म रोग और होम्योपैथी।

0: समय होगा सुबह 6:45। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुनिए सुबह 7:30 पर और दोपहर 12:15। रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे संगीता शंकर का वायलिन वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में धनराज कुमार के गाए भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे सुबह 9:50 पर। रेणु पटेल के गाए भजन और गीत आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। सुबह 10:05 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा श्याम लाल बेगाना और साथी हेम श्रीवास्तव, इनके गाए लोकगीत। रघुराज सिंह यादव और साथी, प्रतिमा मिश्रा, त्रिभुवन नाथ गौड़ और साथी, इनके गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 2:30। NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा सुबह 10:30। 11:30 बोलते नगमे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी स्निग्धा श्रीवास्तव की वार्ता महिलाओं के अधिकार। शाम 5:15 युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी, इसमें श्रोता सुनेंगे कहानी। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे रोहित जायसवाल की वार्ता हमारी सांस्कृतिक विविधता हमारी शक्ति और सुनेंगे मेरी खेती मेरी बात। शाम 7:31 पर रामेंद्र कुशवाहा की कहानी सुनवाई जाएगी। रात 8:30 विविधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे मोहन धनराज से मोहम्मद शमीम की बातचीत, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज का दृष्टिकोण। रात 9:30 गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 MHz पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 MHz पर।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान संवेश्वरों में, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रक्तदान तकलीफ दे नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान।

मीडियम व्यू 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दलम कोलकाता नाइट राइडर्स दलम सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मिलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता, यस्योद्देश्यं प्रमुखक्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक संबंधान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुमासीत्। व्यापारस्य निवेशस्य तन्त्रज्ञानस्य रक्षायाः स्वक्षोर्जायाः सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वम् आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरं उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना घोषितं यत् भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेष सामरिक सहभागित्वेन वर्धयितुं निर्णयः कृतः। श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ पक्षौ सहकारं वर्धयितुं विस्तृतं चर्चां कृतवन्तौ। भारत इटली नवान्वेषण केन्द्रस्य स्थापनार्थं च कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। सः अवदत् यत् भारत इटली रक्षा औद्योगिक मार्गचित्रं सैन्योपकरणानां सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च मार्गं प्रशस्तम्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् उभौ देशौ नौवहन क्षेत्रेषु पत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे, नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः अधुना स्वस्य पूर्णक्षमतया साधयितुं समर्थाः सन्ति। गत केषुचित् वर्षेषु भारत इटली देशयोः मध्ये सम्बन्धाः अभूतपूर्वगत्या विस्तारिताः सन्ति, अधुना च निर्णायकं स्तरम् अवाप्नोत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा तस्य इटली देशीया समकक्षीया जॉर्जिया मिलोनी इत्युभाभ्यां लिखिते संयुक्त लेखे उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सौहार्दपूर्ण स्नेहात् विशेष सामरिक सहभागित्वेन विकसितः अस्ति, यस्याधारः स्वातन्त्र्यस्य, लोकतन्त्रस्य, भविष्यस्य कृते संयुक्त दृष्ट्याधारित मूल्येषु च निहितास्ति, उभौ नेतारौ प्रकाशितवन्तः। नेतारौ उक्तवन्तः यत् यदा वैश्विक व्यवस्थायां गहन परिवर्तनं प्रचलति तदा भारत इटली सहभागित्वं उच्चतम राजनैतिक संस्थागत स्तरेषु नियमित आदान प्रदान द्वारा दर्शितमस्ति। एकविंश्यां शताब्द्यां समृद्धिः सुरक्षां च राष्ट्राणां नूतनाशयस्य, ऊर्जा परिवर्तनस्य, प्रबन्धस्य, सामरिक सार्वभौमत्वस्य सुदृढीकरणस्य च क्षमतायाः उपरि परस्पर समन्वयं प्रतिबिम्बयति इति उभौ उक्तवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन देशस्य रक्षाक्षेत्राय एकं महत्वपूर्णोपलक्ष्यं साधितम्। यस्मिन् मानवरहितं वायुयानेन प्रक्षेपितं सटीक निर्देशित वी

0: 3 प्रक्षेपास्त्रस्य अन्तिम विकास परीक्षणानां सफलतया सम्पादितम्। आन्ध्रप्रदेशे कुर्नूलस्य समीपे DRDO परीक्षण परिधि मध्ये परीक्षणं जातम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः DRDO संस्थायाः अभिनन्दनं कृत्वा रक्षाक्षेत्रे स्वावलम्बनार्थं प्राप्तं व्यूहात्मकं सोपानमिति वर्णितम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य सियोल नगरे दक्षिण कोरिया देशस्य रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासनस्य मन्त्रिणा ली योंग चुल इत्यनेन सह मिलितवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्री सिंहः अवदत् यत् उपवेशने उभौ पक्षौ संयुक्त विकासस्य, संयुक्त उत्पादस्य, संयुक्त निर्यातस्य च मार्गाणां निर्माणार्थं सहभागी प्रयासानां उपयोगाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सः अग्रे अवदत् यत् द्वयोः देशयोः नवान्वेषण व्यवस्थायाः समन्वयार्थं महत्वाकांक्षी काइंड एक्स उपक्रमस्य संभावनायाः उद्घाटनस्य मार्गचित्रस्य विषये अपि विचारः अभवत्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य आगामि जनगणनायां जातिगणनां कर्तुं केन्द्रस्य निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। उक्तं च यत् अयं विषयः सर्वकारस्य नीतिक्षेत्रस्यान्तर्गतमायाति। मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठेन उक्तं यत् सर्वकारेण तेषां कृते कल्याणकारी उपायान् कल्पयितुम् अनुन्नतवर्गेण सम्बद्धानां जनानां संख्या अवश्यमेव ज्ञातव्या। न्यायपीठेन उक्तं यत् एतादृशं दत्तांशसंग्रहणे किमपि अनुचितं नास्ति तथा च विषयेऽस्मिन् हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरी वर्येण अद्य नवदिल्ल्यां मन्त्रालयस्य हिन्दी परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षा कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते लेखे श्री गडकरी वर्यः अवदत् यत् हिन्दी केवलं भाषा नास्ति, सा तु राष्ट्रस्य एकीकरणस्य प्रबल माध्यमरूपेण कार्यं करोति। केन्द्रीय मन्त्रिणा उक्तं यत् मन्त्रालयस्य अधिकतमं कार्यं हिन्दीभाषायाम् एव भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तुं तस्य प्रयासः अस्ति। भारत ऋतुविभागेन अस्मिन् सप्ताहे उत्तर पश्चिम भारते तथा मध्यभारते तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितेः सम्भावना प्रकटिता अस्ति। IMD इत्यस्यानुसारम् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्ड इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रान्तरे असम, मेघालय, केरलम्, माहे, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, करैकल, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु च श्वः यावत् प्रचण्डवृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् IPL क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
4: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
3: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
4: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत।

0: और पेड़ों की सुरक्षा।
1: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पंचो राम राम।
1: ए हो रानू भैया।
0: हाँ राधा बहनी।
1: देखा दिन पर दिन तो तापमान बढ़त जात है।
0: एकदम सही कहत हो, हम सभी पंचायती आवत रहे ना।
1: हाँ।
0: अरे ती जान ला कि जौन धूप लगत रहन हो, हेलमेट लगाए के बाद गमछा से मुंह बांधे पड़ा जानू।
1: अरे भैया देखा ये समय तो ऐसा चलता है कि जेके बहुत जरूरी ना होए
0: हाँ हाँ
1: वो
0: हाँ
1: घरे से बाहर ना निकले।
0: हाँ एकदम सही कहूँ।
1: और भैया मैं सबसे आज के जो जरूरत बाटे ना
0: हाँ हाँ
1: वो
0: हाँ
1: है कि जानकारी ही बचाव है।
0: एकदम सही कहो।
1: तो काहे से कि घाम होत है तेज
0: हाँ हाँ
1: और उमा शरीर में कहूँ ना कहूँ पानी की कमी हो जात है।
0: एकदम सही कहती है।
1: तो भैया आज हम अपने पंचायती में
0: हाँ हाँ हाँ
1: सब विषयन से महत्वपूर्ण विषय
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: तेज धूप से कैसे बचा जाए
0: हाँ हाँ
1: और खुद के कैसे हाइड्रेट करे जाए चाहे कि काहे से पानी की कमी ना हो सके।
0: एकदम सही कहूँ। अच्छा का का उपाय है हो राधा बहनी।
1: अब आई बात समझ में।
0: हाँ हाँ
1: देखा रानू भैया की हूँ सुना और अपने पंच भैया किसान भैया जो भी कार्यक्रम सुनने वाले हैं
0: हाँ हाँ हाँ
1: हम उन सब का कह देव कि भैया सबसे बड़ा जरूरी है कि ई मौसम में
0: हाँ
1: अपनों के बचावे अपने परिवार के बचावे और उमा सबसे पहले भैया समझ लें कि ऐसे का नुकसान होता है।
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ सबसे पहले तो भैया पानी की कमी से देखा सिर दर्द होई
0: हाँ
1: चक्कर होई और
0: हाँ
1: कमजोरी होए से लू के लगे के खतरा बढ़ जाते भैया।
0: एकदम सही कहत हो। अच्छा एकर बचाव का करे के चाहिए।
1: हाँ हाँ भैया देखा तो होएगा वा कि हम कैसे का समझते है कैसे हमका लागत है कि लू लग जाई।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: एकर बचाव है कि सबसे बड़ा जरूरी बाटे
0: हाँ
1: कि
0: हाँ हाँ
1: एक बात के गांठ बांध लें कि सवेरे संझा अपन काम करें
0: एकदम
1: जितना हो सके सवेरे काम निपटा लें
0: हाँ
1: ना
0: हाँ
1: होए घरे में रह के आराम करें घरे
0: हाँ
1: के अंदर रहें घरे के अंदर के काम करें ओके बाद संझा के ही बाहर निकलें।
0: एकदम
1: और अगर कौनो मुसीबत होए कौनो ऐसी बात ही होए कि निकले के पड़े जरूरी काम हो तो
0: हाँ
1: भैया गमछा रख के चलें और अपन शरीर के पूरी तरह ढक लें
0: हाँ हाँ हाँ
1: चाहे जूता मोजा पहन लें चाहे जौन तरह से पूरी तरह ढक के रखें सूती कपड़ा पहने जैसे कि जौन पसीना होत है ओका सूख लें। और अगर थोड़ भी रास्ते में लागे कि हमका कोनो परेशानी लागत है तो कहूँ छाए देख के आराम कर लें पानी अपने साथे साथे जरूर रखें।
0: एकदम सही कहूँ। अच्छा एक बात का और ध्यान देवे के चाहिए हो राधा बहनी।
1: हाँ हाँ
0: जौन कपड़ा पहने
1: हाँ
0: किसान भैया बहनी, अरे ढीला ढाला कपड़ा
1: बिल्कुल
0: पहने।
1: बिल्कुल भैया।
0: दूसर चीज के ये बात का ध्यान रहे कि अगर वो सूती कपड़ा है तो सबसे बढ़िया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तीसर बात ये है कि अगर सफ़ेद रंग का हो, हल्का नीला है, ऐसा कपड़ा रहे से का है कि धूप का जो प्रभाव रहता है वो थोड़ा कम हो जाता
1: बहुत सही बात बताए भैया। और हम जैसे बताते रहे ना कि के बचाव में
0: है।
1: एक सबसे जरूरी बात ये है कि चाहे घरे में रहें और चाहे बाहर रहें ये मौसम में
0: हाँ
1: तेज धूप से बचे के लिए खुद के हाइड्रेट रखे के लिए खाली पेट ना रहें
0: हाँ
1: बार बार पानी पिए हो सके तो ORS पिए ना हो सके तो नमक चीनी के घोल बनाए के पिए
0: हाँ
1: लेकिन अपन शरीर में अपन लड़कन बच्चन के शरीर में पानी की कमी ना हो दें।
0: एकदम सही कहें। एक बात और रहे हो राधा बहनी, अगर निकल तहिन जैसे कुछ महिला हैं
1: हाँ हाँ
0: उन्हें सबके निकले होता है भाई बारी बगीचा जाते हैं
1: हाँ
0: या तो फिर हाट बाजार जाते हैं, तो उन्हें ये बात के ध्यान रखे है कि अगर छाता हो
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: छाता जरूर लेके चले भैया।
1: कहे के मतलब है कि कौनों के तरह धूप लग ना सके
0: हाँ हाँ
1: ओके
0: हाँ
1: बचाव जरूर करें।
0: हाँ हाँ हाँ
1: देखा भैया जौन भी हमारे सुनने वाले पंच भैया हैं
0: हाँ हाँ
1: काम तो भैया देखा चाहे सर्दी

0: होए, चाहे गर्मी हो, चाहे दौराजा बरसत होए, हमार सबे के खेती किसानी के काम है, बारह मासी काम है, तो काम तो करबे के पड़ी। कहे के वही से खेत चलत है, वही से घर चलत है। और रही बात देखा, ये सब तब ही चली जब अपन स्वास्थ्य सही रही,
1: एकदम सही।
0: तो मौसम के अनुसार स्वास्थ्य के भी रखे के चाहिए। और ये मौसम है कि तापमान बढ़त जात है, गर्मी बढ़त जात है, हाँ पारा चढ़त है, तो ये समय जौन भी हमार सरकारी अफसर हैं, मौसम विभाग के लोग विशेषज्ञ हैं, सब सब हम सब के अलर्ट करत हैं कि कहा जाता है हीट वेव, हीट वेव से अलर्ट करत है।
1: एकदम सही कहता हूँ। अच्छा एक बात तो और है, आजकल देखा कुछ बाजारी में क्रीमो आते हैं जिसके सनस्क्रीम कहते हैं धूप से बचे बिना, अगर निकलत है ना वो, अगर ओकर व्यवस्था है उनके लगे भाई वो लायक है न, तो भैया ओके लगाई के चली हैं तो उहू से उन्हें राहत मिले।
0: देखा अगर जेके पास हो तो ओका इस्तेमाल कर लें,
1: और
0: अगर ना हो सके तो जौन भी घरेलू संसाधन हुए ओकर इस्तेमाल करें। देखा खाए में दही के इस्तेमाल जरूर करें, इस समय दही का इस्तेमाल करें, नींबू पानी के इस्तेमाल करें कि जितना आप बताएं ना भैया कि लगावे की चीज, उससे ज्यादा जरूरी बाटे भैया कि अपन शरीर के अंदर के मजबूत रखें। ऐसे चाहे कौनो भी हो पेय पदार्थ आप समय समय पे घंटा में दो घंटा में लेत रहें, जैसे कि गर्मी का प्रभाव ना पड़े सके।
1: एकदम सही कहते हैं, ऐसे में देखा बाजारी में काम से बेल एक शरबत है, नारियल का पानी है, किसान भैया बहनी हरे अगर घरे का बेल है ओकर उपयोग कर सकते हैं।
0: बेल का शरबत तो भैया बहुत फायदा करते है, पेट के लिए फायदा करते है।
1: और साथे साथे सत्तू देखा हो राधा बहनी अपने सबके लड़के में पहले सत्तू खूब मिले।
0: अरे भैया सत्तू के शरबत तो बहुत बढ़िया होते हैं।
1: अच्छा ओकर उपयोग करें। और ये समय देखा अपने खेती किसानी में का नाम से खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा है, इमन जो है भैया 90% तक पानी है, तो भैया इहू का उपयोग
0: कहे का मतलब है कि जौन भी पानी वाले फल हुए पेय पदार्थ है उन सब का सेवन करे से भैया आप सबे अपन के हाइड्रेट रख सके थे, पानी की कमी से बचा सके थे। और धूप से बचाए के लिए तो भैया जितना हो सके अपन काम के सवेरे और संझा में करें, दिन में 12 से 4 के बीच में ना निकले।
1: एकदम सही को एक बात और रहे हो राधा बहनी, देखे काम से अपने पंचायती में बार बार काम से बात का अरदास किया जाता कि लड़किया का देला जो रहन भैया देखे पढ़ के आवत है तो का है कि भैया बारी बगीचा चला जाता है। बाड़ी बगीचा जाए के सबसे बड़ी वजह ये हो कि भैया गर्मी लगता है बगीचा में खेलत है, साथे साथे भैया जैसे तालाब है पोखरा है और जेकरे घर के अगले बगले नदी है, लड़का गदेला का करत है कि उमन नहाए लगत है। घरे वालन के ये बात का बहुत ध्यान देव जरूरी है कि भैया दोपहरिया में हमारे लड़का गदेला कहाँ जातन, ऐसे ये है कि दुर्घटना हो से बच सकत है। कहीं के लड़का गदेला के मालूम ना है पौड़े आवत ना आया है, तैरे आवत ना आया है, तो अगर नहाए लगत हैं तो भैया डूबे के जो उन्हें आशंका बढ़ जाते
0: हैं, आशंका रहत है। और अभी दोपहरिया अगर बाहर रही है तो लू लगे के आशंका रहत है।
1: तो किसान भैया बहनी हरिन के भैया ये बात के बहुत ध्यान देवे के चाहे। अच्छा हम ही कहते रहे भैया बात बात कही तो होते रहे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखा जब तक अपने पंचायती में गीत कम नहीं ना ही होते कुछ नीक नहीं लगे थे।
1: एकदम सही कहते हो राधा बहनी, तो आज भैया लोकगीत में कहा है हो?
0: देखा भैया आज अपने पंचायती के लोकगीत में राम प्रसाद और संघातिन के गमनाई बाटे, तो अब तुम सुना पंच भैया भी सुने
1: सुनवाए दे।

0: हाँ रानू भैया,
1: हाँ
0: देखा कितना बढ़िया गुनाई रही राम प्रसाद और संघातिन के इतनी प्रचंड धूप माँ
1: हाँ हाँ हाँ
0: रिमझिम बरसेला पनिया से, जैसे लागत है कि फुहार पड़ गई हो।
1: एकदम सही कहता है। अच्छा एक बात तो रहे हो,
0: हाँ
1: देखा अभी बातचीत चलत रही हो हमार सब कर कि कैसे ये गर्मी से बचाव किया
0: बिल्कुल
1: जाए।
0: बिल्कुल।

0: ये देखा लइका के दिलन के तो बात हुई है, साथे साथे देखा अपने गुरु चौवा का भी बहुत ध्यान देवे का
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल भैया।
0: यह समय जौन धूप पड़ता है हो राधा बहनी, जब तक अपने पशु प्राणी के ध्यान न दिया जाए भैया देखे वो दुधारू जाए। और सबसे ज्यादा ध्यान यह समय उनकर रखा भी की विदा जरूरी है कि उनके जौन हम सभी चारा देते हैं वो चारा के प्रभाव से ही दूध में बढ़ोतरी
1: बिल्कुल
0: होता।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो हम तो ये कहब कि किसान भैया बहनी हरे अपने जो उन पशु हैं उन्हें भैया छाहें बांधें, ऐसा जगह बाहर नहीं, अगर कच्चा मकान है तो हुआ बांधें, और अगर खिड़की उड़की है तो हुआ कनम से बोरा वोरा लगा दें भैया भिगोई के। तो ऐसे ये है कि उन्हें धूप हो ना
1: बिल्कुल
0: लगे,
1: बिल्कुल।
0: साथे साथे भाई टीकाकरण भी
1: हाँ
0: करा
1: हाँ
0: दें।
1: समय समय पे करावत रहे,
0: हाँ हाँ
1: जैसे
0: हाँ
1: कि बरसात आवे के पहले उनके टीकाकरण भय रही तो उनका कोनो परेशानी ना हुई, कोनो
0: हाँ
1: बीमारी आजारी ना हुई।
0: हाँ हाँ
1: तो देखा किसान भैया सबे, हम सबे बात करत रहे, अभी चर्चा करत रहे कि तेज धूप से कैसे बचे, खुद का हाइड्रेट कैसे रखें,
0: हाँ
1: हीट
0: हाँ
1: वेव से बचे, और अपन अपन परिवार के अपन पशुओं के ध्यान रखें। काहे से कि किसान भैया कहा जाता है कि अपन सभी के सेहत के ध्यान रखे के चाहिए, कहीं
0: हाँ
1: स्वास्थ्य सीधा स्वस्थ किसान ही समृद्ध किसान होते भैया।
0: एकदम सही कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है हो, तुलसीदास जी कहे हैं तुलसी धन धाम शरीरे से,
1: बिल्कुल
0: धन और
1: बिल्कुल
0: धाम
1: भैया।
0: दोनों देखे आप स्वस्थ रही हैं तब आए हम
1: इतनी बढ़िया नीक बात कह दिए तो एक बात हम और कहे चाहे कि आज है बुधवार के दिन।
0: अच्छा तो आज है नीति वचन।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल भैया,
0: नीति वचन में आज प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी जी के एक
1: नीति वचन बाटे
0: हाँ
1: तो हम तो कहा हम सबे सुने और माँ पंच भैया भी सुने।
0: सुनवाए दें।
2: भारतीय संस्कृति में मानव जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए और जीवन को सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए महापुरुषों द्वारा समय समय पर जिन नीति वचनों का उल्लेख किया गया है वे जीवन में प्रेरणा का काम करते हैं। संतों, महात्माओं, कवियों और प्रमुख समाज सुधारकों ने समय समय पर ऐसी बातें कही हैं जिनसे हमारे जीवन में सुधार की संभावना बनी रहती है। ये नीति वचन एक प्रकार से जीवन पद्धति की सूक्तियाँ हैं जो कम शब्दों में गहरी बातें बताती हैं। प्रस्तुत हैं कुछ नीति वचन और उनमें निहित उनके अभिप्राय। सबसे पहले मैं रामचरितमानस से शुरू करता हूँ। रामचरितमानस की एक मूर्ख पात्र है मंथरा, उसने जो बातें कही हैं वे बहुत बड़ी बात है और उसका अमल करने मात्र से जीवन सारी समस्याओं से बच सकता है। वाक्य है, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करै सोई छारा। इसका ध्वन्यार्थ यह है कि जब कमल बिना जल के अर्थात अपने मूल जीवन स्रोत से कट जाता है तो पोषण प्रदान करने वाला सूर्य ही उसे नष्ट कर देता है। शिक्षा यह है कि अपनी मूल सांस्कृतिक धारा से अलग हुआ व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। अपने स्वभाव, संस्कार और मनोवृत्ति के विरुद्ध पड़ने वाले कुटिल जनों से मित्रता न करने अर्थात उन्हें साथी या जीवन साथी न बनाने का उपदेश कविवर रहीमदास जी की निम्न पंक्तियों में व्यंजित हुआ है। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह डोलत रस आपने उसके फाटत अंग। संतोष को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और सुख का अक्षय स्रोत बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। रहीम ने भी संतोष को सबसे बड़ा धन बताया है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वर्तमान भौतिकवादी युग का मानव अपने दुख से दुखी न होकर पड़ोसी या पराये व्यक्ति के सुख को देखकर दुखी है। ऐसे लोगों को उपदेश देते हुए कबीर दास जी ने लिखा है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जियो। दूसरे की उन्नति से जलने वाली ईर्ष्या वृत्ति मनुष्य को जो तनाव देती है वही समस्त साध्य असाध्य रोगों की जड़ है। कविवर बिहारी ने बाज पक्षी के बहाने इस अन्योक्ति परक दोहा के द्वारा प्रत्येक मानव को यह शिक्षा दी है कि जिस कार्य से किसी स्वार्थ की सिद्धि न हो, कोई पुण्य लाभ न हो, बदले में श्रम की बर्बादी हो, उसे नहीं कर

चाहिए, दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षी ही न मार। मानव मात्र को जल कल्याण हेतु आत्म बलिदान का अमर संदेश मैथिली शरण गुप्त की निम्न पंक्तियों में व्यंजित हुआ है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो जो याद हो करें सभी। आधुनिक महाकवि श्री रामवरण त्रिपाठी जी ने निम्न दोहे के माध्यम से उन लोगों के लिए स्वसंस्कृति में जीवित रहने का कड़ा संदेश दिया है जो पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में अंधराए हुए से अनर्थकारी शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। यथा माँ को मम्मी पुकारते, पिता डेड भी साथ, अप संस्कृत के दौर में बच्चे हुए अनाथ। चलचित्र में घुसी हुई अमर्यादित नग्नता पर व्यंग करते हुए उन्होंने मर्यादित जीवन का आह्वान युग दर्शन के ही निम्न दोहे में किया है। क्यों मयूर इठला रहे अपने नंगे नाच, देखोगे चलचित्र तो टूटोगे ज्यो कांच। भावावेश में आकर अनुचित उचित का विचार किए बिना काम करके जीवन भर पश्चाताप करने वालों को गिरधर कवि ने इन शब्दों में सतर्क किया है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपना जग में होए हंसाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसी ही बातों का उल्लेख किया है। सहसा कर पाछे पछताही, कहे वेद बुध ते बुध नाही। हमारे आस पास के प्रच्छन्न राक्षसों के लक्षण बताते हुए उन्होंने लिखा है, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जानहु ते निश्चर्य प्राणी। प्रजाजनों को प्रताड़ित करने वाले सत्तासीनों को उन्होंने इन शब्दों में कड़ी चेतावनी दी है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने निरंकुश शासकों को चेतावनी देते हुए लिखा है, आह प्रजापति यह न हुआ है कभी न होगा, निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा। नारी समाज के अधिकारों को हनन करने वाले पुरुष समाज को उन्होंने इन शब्दों में सावधान किया है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। माता पिता और गुरु अपनी संतति और शिष्य का सदैव हित चाहते हैं, उनके प्रत्येक आदेश में कल्याण छिपा होता है। इस यथार्थ को व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। पिता के प्रत्येक आदेश के पालन का उपदेश उन्होंने इन शब्दों में दिया है, अनुचित उचित विचार तज जो पाले पितु बैन, सो भाजन सब सुजस कै बसै अमरपुर ऐन। विषम परिस्थिति का सामना करते करते मानसिक रूप से टूट चुके लोगों को नैराश्य के विरुद्ध आशावादी जीवन का संदेश राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन शब्दों में दिया है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जीवन में स्वस्थ रहने के उपाय बताते हुए घाघ कवि ने लिखा है, प्रात काल खटियाते उठ के पियो तुरंत ही पानी, वैद घर में झांक न आवे बात घाघ की मानी। हमारे नीतिकारों ने जीवन को इतना मर्यादित कर दिया है कि यदि उस मर्यादा का पालन किया जाए तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या पूर्ण जीवन काल में आ ही नहीं सकती। आगे भी बताया गया है कि भूख से अधिक भोजन करने वालों को अल्पायु होने का भय सदैव बना रहता है। इस बात को व्यक्त करते हुए घाघ कवि ने ही आगे लिखा है कि कम खाने वाले और गम खाने वाले लोग सदैव सुखी रहते हैं। ज्यादा खाए जल्द मर जाए, सुखी रहे जो थोड़ा खाए, रहे निरोगी जो कम खाए, बिगड़े काम न जो गम खाए। आयुर्वेद में जीवन रक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनेक बातें बताई गई हैं। भोजन उनमें से प्रमुख है।
आहार के विषय में

उचित निर्देश देता हुआ साहित्यकार शास्त्रकार कहता है, पूरे दशनेनार्धम तृतीयम उदकेन्तु वायोः संचरणार्थाय चतुर्थमवशेषेत। अभिप्राय है कि उदर का आधा भाग भोजन से भरना चाहिए, 1/3 भाग जल से भरना चाहिए और शेष 1/4 भाग वायु संचरण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। यदि व्यक्ति इस नियम के अनुसार अपना आहार सुनिश्चित करे तो उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बार बार उसे चिकित्सालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, अर्थ और समय की बचत के साथ साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी। जिस समाज के लोग दूसरों का दुख बांटते हैं और अपना सुख बांटते हैं, उनके जीवन में स्वर्गीय सुख और शांति की स्थिति सदैव बनी रहती है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के मुख से मानव मात्र को यही संदेश दिया है, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। दुखों का सामना करते करते हीनता की ग्रंथ में बंध चुके मानवों के म्रियमाण जीवन के लिए कामायनी की ही यह पंक्ति संजीवनी का काम करती है। दुख की पिछली रजनी बीच बिलसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। परिस्थिति की मार से हताश लोगों के लिए आचार्य विश्वनाथ पाठक कृत सर्वमंगला काव्य की निम्न पंक्तियां सबल संबल का काम करती हैं। आवे रात भये दिन फिर से, संझा भये सवेरा, कबहु निवास जुरै महलन मा, कबहु पेड़ तर डेरा, कबहु कथरिया मिले पुरुष का, कबहु फूल कैसैया, कबहु दृगन मा काजर सोहे, कबहु निछान असुइया। धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को दुखों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। महियसी महादेवी वर्मा ने इस यथार्थ पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जिनका जीवन फूलों की भांति सुकुमार था, उन्हें भी विधाता की क्रूर नियति व्यवस्था में कठिन से कठिन जीवन जीना पड़ा है। उन्होंने लिखा है, तुहिन बिंदु सा मंज सुमन सा, जिनका जीवन था सुकुमार, दिया उन्हें भी क्रूर काल ने पाषाणों का शयनागार। जीवन में छोटी सी उपलब्धि पर कुछ लोग इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि आगे और उपलब्धि का प्रयास बंद करके पूर्ण शिथिल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रसाद जी ने इन शब्दों में सचेत किया है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। संकट में घिरे हुए लोगों को भगवान पर भरोसा रखकर मुक्ति का प्रयास करने की शिक्षा देते हुए कवियर रहीम दास ने लिखा है, रन बन व्याधि विपत्ति मह, रहिमन मरय न रोय, जे रक्षक जननी जठर सो हरि गयउ की सोय। स्वस्थ सुखी और शांत जीवन के लिए हठधर्मिता का जहर नितांत घातक है। एक अकेला हठधर्मी व्यक्ति पूरे परिवार के लिए संकट का कारण बन जाता है। इसलिए हठवादी प्रवृत्ति से बचने का संदेश देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हठ बस सब संकट सहे, गालो नहुष नरेश। पुनः उन्होंने भगवान शंकर के मुख से सती के बहाने मानव मात्र को यह उपदेश दिया है कि जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पैहौ परिणामा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी बहुत सी बातें बताई हैं। एक व्यक्ति ने अपने जीवन का उल्लेख दिया था कि मैं बेरोजगारी से तंग आकर के आत्महत्या के लिए प्रयास कर रहा था, तभी गोस्वामी तुलसीदास की यह पंक्ति कानों में पड़ती है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहें रघुवीरा। जीवन से हताश लोगों के लिए यह पंक्ति संजीवनी का काम करती है। अच्छे और कल्याणकारी कार्यों के लिए हठधर्मिता को उन्होंने उचित भी बताया है, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नौ लोगों को इतना बड़ा दुश्मन बताया है कि उनसे विरोध न करना चाहिए, न तो उनसे मित्रता करनी चाहिए। मारीच के शब्दों में उन्होंने मानव मात्र को शिक्षा दी है कि तब मारीच हृदय अनुमाना नवहि विरोधे।

0: नहि कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंद कवि भानस गुनी। पुनः उन्होंने खलों से बैर और प्रीत दोनों न करके उदासीन रहने की शिक्षा इन शब्दों में दी है। कवि को विद गावह यस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरी स्वान की नाई। देश रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीरों के बलिदान को सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता में मुक्त कंठ से महिमान्वित करते हुए मानव मात्र के लिए यह संदेश व्यंजित किया गया है कि राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह नहीं की जानी चाहिए। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि हो जाने से, मूल्यवती होती है भस्म यथा सोने से। आधुनिक जनवादी कवि स्वर्गीय कैलाश गौतम जी ने अपने अनुभव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से बचने की सलाह निम्न पंक्तियों में दी है। भले डांट घर में बीबी की खाना, भले काम ऐसे वैसे चलाना, भले वन में जाकर धुनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, कचहरी न जाना।
1: नानू भैया, देखा कितना नीक नीति वचन रहा प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी के।
2: हाँ हाँ।
1: और हम सब सुने, हमार पंच भैया सुने, कहे से कि नीति वचन केवल शब्द नहीं होते भैया।
2: हाँ हाँ हाँ।
1: जीवन के सवारे वाले सीख देते हैं, और आज के नीति वचन में ऐसे संदेश रहा, ऐसी प्रेरणा रही कि सब सुनने वाले कुछ नई सोच लेकर के आगे जाए।
2: एकदम सही कहो बहनी, ऐसे किसान भैया बहनी हरी के साथ साथ आम जनमानस भी कुछ न कुछ जरूर सीख ले। हम एक बात और कहे चाहते
1: हैं। बोला भैया।
2: बात ऐसा है कि देखे धूप बहुत तेज होता है और गर्मी बहुत पड़ता है, और एक जोन गर्मी है ये खत्म करे बिना जल के बहुत जरूरत है।
1: बिल्कुल भैया,
2: जल ही जीवन है। तो इमन ये है कि भैया देखे किसान भैया बहनी हरण के चाहे कि यह मौसम में जल संरक्षण के तैयारी जरूर कर ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: जैसे का है कि जोन पोखरा तालाब है किसान भैया बहनी हरिन के, ओके भैया साफ सफाई कह के अपन गढ़ा सही कर ले। कुछ किसान भैया बहनी हरी का है कि अपने घरे के बगले ही सोखता बनावा लेते हैं। ऐसे ही है कि जोन बरसात का पानी आवत है वो भैया नाली के द्वारा सोखता में चला जाता है। तो उसे जौन है कि भैया सबसे बड़ी बात यह है कि जौन हमारे पानी का जल स्तर है, देखे दिन पर दिन पानी का जल स्तर घटत जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो एमन ये है कि भैया अगर ये तरीके से पानी के यानी जल का संरक्षण होता है तो भैया ऐसे किसान भैया बहनी हरन का बड़ा फायदा हुए। और इसी पे एक वार्ता है प्रभा शंकर शर्मा भैया का, जल संरक्षण का उपाय
1: बहुत बढ़िया है।
2: तो हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरन के सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाए दे भैया।
3: जल के बिना जीवन संभव नहीं है, अतः यह एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। सामान्य तौर पर हम सोचते हैं कि मरुस्थल को छोड़कर सभी जगह जल की बहुलता है, किंतु ऐसा नहीं है। धरती पर कुल जल जो उपलब्ध है उसका 96.5% लगभग महासागरों में है, जो खारा है, घरेलू उपयोग के लायक नहीं है। पृथ्वी पर सिर्फ 2.53% कुल मीठे जल का संचित भंडार है, उसका भी आधे से अधिक भाग ध्रुवों पर हिम आवरण में संचित है। 1% से भी कम मीठा जल भूमिगत तथा नदी व झीलों में विद्यमान है। अतः सीमित व नाजुक संसाधन होने के कारण जल का संरक्षण किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। वास्तव में जल जीवन की इकाई है। शायद यही कारण है कि हमारे कवि एवं साहित्यकार भी जल की महिमा का बखान करने में पीछे नहीं रहे। कवि रहीमदास जी ने कहा है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जहाँ विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब के पार हो गई है, मध्यम वर्ग की बढ़ती आय एवं जीवन स्तर के कारण मानव जाति ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग की ओर प्रवृत्त है। उपभोग तथा पूर्ति के इस चक्र से जहाँ एक ओर वित्तीय तौर पर मध्यम वर्ग समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है, ठीक इसके विपरीत दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की सूची में जल संसाधन सबसे ऊपर आता है। जल संरक्षण का तात्पर्य जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण व कृषि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना है। जल संरक्षण का मूल तत्व पृथ्वी पर होने वाली वर्षा को संग्रह करके तथा

जल प्रवाह को नियमित कर व स्वच्छ पेयजल का निश्चित भंडार बनाए रखना है। जल संरक्षण के अंतर्गत जल चक्र के वर्षा से लेकर समुद्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना सबसे बड़ा कार्य है। चूंकि उपयोग में आने वाला जल सदैव समुद्र की ओर जाने के लिए प्रवृत्त रहता है, अतः इसकी गति को कम करके इसका अधिकाधिक उपयोग करना जल संरक्षण का प्रमुख सिद्धांत है। यदि वर्षा के जल को सतह पर न बहने देकर भूमिगत होने के लिए प्रेरित किया जाए तो इससे जल का वाष्पीकरण कम होगा एवं जल कम बहेगा और भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि होगी तथा मिट्टी की नमी बढ़ेगी और उसका कटाव भी रुकेगा। वर्षा का पानी भूमि के अंदर प्रवेश करे, इसके लिए यह अनिवार्य है कि भूमि की ऊपरी सतह पोली हो, घास की परत अथवा चौड़ी पत्ती वाले वनों के नीचे सूखी मिट्टी आदि हो, ताकि जमीन में अधिक जल प्रवेश कर सके। वन जल को नियमित एवं संरक्षित करने के प्राकृतिक साधन हैं। जब वर्षा का पानी वनाच्छादित भूमि पर गिरता है तो वह बिखरी पत्तियों तथा पोली मिट्टी व जैव पदार्थों द्वारा भूमि में प्रवेश कर जाता है, जिससे भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि होती है। मीठे पानी का संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। इसके मुख्य कारण पर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि जल संरक्षण की कमी के साथ साथ जल का अधिकाधिक दुरुपयोग या दोहन होने के कारण भूजल स्तर गिरता जा रहा है। भूजल स्तर गिरने से रोकने के लिए वर्षा जल का संग्रहण किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। वर्षा का 80% जल नदियों के माध्यम से बहकर वापस समुद्र में चला जाता है। तालाब व चेक डैम बनाकर वर्षा जल को रोकने से भूमिगत जल का पुनर्भरण संभव है। इसके साथ ही वर्षा का पानी जो बड़े मकानों की छतों पर पड़ता है उसे जल निकास पाइप के माध्यम से एकत्र कर भूमिगत जल को रिचार्ज किया जा सकता है। परंतु यह ध्यान रहे कि छत का यह पानी सीधे भूमिगत जल में ना मिले, बल्कि इसके लिए एक बड़ा गड्ढा बनाकर उसमें बड़े बोल्डर, कंकड़ और बालू आदि डालकर पाट दिया जाता है, जिसके माध्यम से छत के पाइप का पानी छन कर भूमिगत जल में मिलता है और शुद्ध भूजल का स्तर बढ़ता है। 250 वर्ग मीटर की छत से 50 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश हो तो 1,00,000 लीटर भूजल रिचार्ज किया जा सकता है, जो कि 150 लोगों के 5 माह के लिए पीने व खाना बनाने हेतु पर्याप्त होता है। यदि वर्षा जल का 80% हिस्सा छत से निकास पाइप के माध्यम से कुंड या टंकी में संग्रहित किया जाए तो इस जल का प्रयोग तमाम घरेलू कार्यों में किया जा सकता है। यदि वर्षा 50 सेंटीमीटर हो तो 100 वर्ग मीटर की छत से 40,000 लीटर पानी कुंड में निकास पाइप के माध्यम से संग्रहित किया जा सकता है। पानी का प्रयोग कम या नियोजित तरीके से करके जल संरक्षण किया जा सकता है। जल संरक्षण के उपायों में सिंचाई के तरीकों को मुख्य रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। किसान भाई ध्यान दें कि नालियों में पानी बहाकर सिंचाई न करके फव्वारा स्प्रे द्वारा सिंचाई करने से जल का अपव्यय कम होगा। बगीचे में पानी सुबह शाम डालें, क्योंकि दोपहर का तापमान ज़्यादा होता है, अतः दोपहर में जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। घरेलू नालियों का पानी पेड़ पौधों में सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाए और घरों में पोछा लगाने के बाद पानी फेंकने के बजाय पौधों या गमलों में डालें। इसके अलावा जल संरक्षण के कुछ और दैनिक उपाय भी हम अपना सकते हैं, जैसे ब्रश करते वक्त नलों की टोंटी खुली न छोड़ें, यथासंभव मग या लोटे का प्रयोग करें। इसी तरह दाढ़ी बनाते समय वाश बेसिन की टोंटी खुली न छोड़ी जाए। पश्चिमी टॉयलेट एवं वाटर बाथ में पानी अधिक बर्बाद होता है, इसलिए इसका अंधानुकरण न किया जाए। सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, सड़कों आदि के किनारे यदि टोंटियाँ खुली या टूटी मिलें तो उन विभागों को समय पर सूचित करें, या अपने घर के आसपास ऐसा हो तो स्वयं उसकी मरम्मत करा दें, क्योंकि जल व्यर्थ न बहने पाए, यह एक अमूल्य निधि है। जल संरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम नज़र डालें तो पाते हैं कि राजस्थान का जोधपुर नगर जल संरक्षण कर पुनः प्रयोग लाने वाले नगरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जोधा राव ने जोधपुर किले के पास एक सफल जल संरक्षण प्रणाली का निर्माण कराया था। राजा

0: गंगा राव की रानी पद्मिनी, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा की पुत्री थी, ने पद्मसर का निर्माण कराया था। पद्म सरोवर का पानी स्थानीय लोग पीने में प्रयोग करते थे। यह सरोवर गर्मियों में भी नहीं सूखता था। इलाहाबाद के श्रृंगवेरपुर में 1977 से 1981 तक उत्खनन कार्य हुआ, जिसमें 250 मीटर लंबा ईंट निर्मित टैंक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 2000 वर्ष पूर्व हाइड्रोलिक अभियंत्रण का अद्भुत नमूना है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भी जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाता रहा है। जल संरक्षण किसी एक व्यक्ति की नहीं, वरन हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर यह प्रण लें कि भूगर्भ जल का कम से कम दोहन हो, ताकि हमारी मानव जाति को निकट भविष्य में जल संकट का सामना न करना पड़े।
1: हाँ, देखा हो राधा बहनियों,
2: हाँ हाँ भैया।
1: जल संरक्षण के उपाय पे प्रभा शंकर शर्मा भैया बहुत बढ़िया फरियाई फरियाई बताए नो,
2: बिल्कुल सही
1: और
2: बताएं
1: एक
2: कि
1: एक चीज के बात रखें कि कौन हिसाब से जल के बचाव किया चाहे चाहे। जैसे गांव घर में कहा होता है कि भैया पोछा ओछा मार के जोन पानी का नम से फेंक दिया जाता, ओकर उपयोग भैया गमला के पानी में या पेड़ पारो हो मन किया जा सके थे।
2: बिल्कुल दिखा। छोटी
1: दूसर
2: छोटी चीजन पे अगर ध्यान दें, छोटे छोटे उपाय करिए, तो कहा जाता है ना, बूंद बूंद से सागर
1: घड़ा
2: भर
1: भर
2: जाता
1: गया
2: है।
1: थे। हाँ
2: तो अगर हम सब बूंद बूंद बचाओ,
1: हाँ हाँ हाँ
2: आप संरक्षण करिए, तो अपन आज के और अपन आए वाले जो नई पीढ़ी है,
1: हाँ
2: ओकरे
1: हाँ
2: बारे हम कुछ दे सके थे।
1: एकदम सही कहते हैं। और कम से एक बात और है
2: हाँ
1: कि देखे किसान भैया बहनी हरिन के हम सभी समय समय पे नई नई जानकारी लिया हुआ जाते हैं,
2: हाँ हाँ
1: और
2: भैया,
1: ओकरे साथे साथे के नाम से किसान भैया बहनी हरिन के हमार सब उनके प्रोग्राम कैसा लगता है ये पंचायत घर के, अगर वो अपन प्रतिक्रिया देवे चाहत हैं या कोनो सुझाव देवे चाहत हैं तो
2: कहिए
1: एक
2: भैया।
1: अपन नंबर है व्हाट्सएप नंबर 800-4926-250।
2: बिल्कुल
1: हम
2: भैया।
1: एक बार फिर से बतावे चाहत ही
2: हाँ
1: 800-4926-250।
2: बिल्कुल सही कहें रानू भैया कि देखा, जौन भी हमार पंचायत कार्यक्रम सुने वाले भैया हैं, किसान भैया हैं, अपन सुझाव अपन प्रतिक्रिया दे चाहें या कौन विशेष जानकारी चाहत हो पंचायत घर कार्यक्रम के माध्यम से, तो
1: हाँ
2: हमार सभी के व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आकाशवाणी के पेज पर जाकर के हुआ कमेंट करके अपन बात कह सके थे। अपन जौन भी बात हुई हम सभी कार्यक्रम में शामिल करब
1: हाँ
2: और
1: हाँ
2: उनके उन जानकारी भी पहुँचाया जाए। तो
1: अच्छा
2: अब देखा
1: एक
2: भैया, चला चली के बेला होत है,
1: हाँ हाँ
2: तो पंच भैया रे से विदा लेन जाए।
1: बिल्कुल लिया जाए पंचो राम
2: राम
1: राम।
2: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: तुम इतने दिन थी कहाँ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन। 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड,

0: जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
1: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
0: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 6:15 बजे लखनऊ से चलकर 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
3: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से।

0: सुन रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
1: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
2: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है, और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।

0: नर्म, मुलायम, ओस में भीगी सी नजर आती है। एक ख्वाबों से भरा मौसम होता है, अभी बस सुबह अंगड़ाई ले ही रही होती है। सबा झूम के कहीं पर्वत से छन छन कर गुजरती हुई हमारे दिलो दिमाग को राहतें बख्श रही होती हैं। और इसी दिलकश मंजर में जब आंखें अभी पलकों की ओट तले सोई सी हों, कोई एहसास जो ख्वाब से उठकर आंखों में आ जाता है, तब शायद दिल कुछ इस तरह से बोल उठता है जैसे कि अभी हम बस ये गीत अपने दोस्तों तक पहुंचाने ही वाले हैं। और ये देखिए कौन सामने दिखाई पड़ रहा है,
1: फिरोज खान साहब नजर आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, और इतनी सुंदर सुरमई सी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की। जब वो कहते ना जा दिले दीवाना, ऐसा लगता है ये जो दिल है वो जो ख्वाबों में रहा है, अब उसे कह रहे हैं कि ख्वाबों की नींद तोड़ो और

0: सामने दिखाई पड़ रहा है।
1: फिरोज खान साहब नजर आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर और इतनी सुंदर सुरमई सी आवाज मोहम्मद रफी साहब की, जब वो कहते ना जा दिले दीवाना, ऐसा लगता है ये जो दिल है वो जो ख्वाबों में रहा है अब उसे कह रहे हैं कि ख्वाबों की नींद तोड़ो और हकीकत में चलो, अब मिलने की घड़ी आ गई है। और जिस अंदाज में वो गा रहे हैं, अपने ही प्यारे से दिल को मनाना और दूसरे दिल की बात समझनी है, करनी है अपने दिल की बात, बहुत सुंदर ये पंक्तियाँ मजरूह सुल्तानपुरी जी की, तो इसको थोड़ा थोड़ा सुनते

0: वाह क्या बात है, ये जो शुरुआत हुई है और सच में हम चाहे जिस भी समय बैठे हों जब इस गीत को सुनते हैं जो कि राग भैरवी में ये रचा गया है, और जब संगीत की बात आती है निहाल
1: जी
0: तो इतनी मधुरता के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे ओस में भीगे हुए वाद्य यंत्र हों सारे, और वो ओस की जो भीगी भीगी सी सुबह होती हैं वैसा ही संगीत नजर आ रहा है जो कि रचा है चित्रगुप्त साहब ने। और चित्रगुप्त साहब बड़े ही सरल हृदय थे नेहा जी, और जितनी भी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है वो भी अगर हम उनके संगीत को सुने तो इतना मधुर संगीत, और ख़ास तौर पर लता जी मोहम्मद रफ़ी के साथ जो उनका कॉम्बिनेशन बनकर आता है, तब लगता है कि जैसे कोई हमारे हृदय को खींचे लिए चला जा रहा हो और हम सम्मोहित से उसके पीछे पीछे चले जा रहे हो। और वैसे ही ये गीत भी कह रहा है जब अभी हम सुन रहे हैं इस गीत को।
1: जी सच बात है, इस तरह की कालजयी रचना चित्रगुप्त जी ही कर सकते थे जो कि सरल हृदय ही थे, क्योंकि जब जहन साफ हो, हृदय बहुत कोमल हो, तो कहते हैं कि उस जहन में, उस हृदय में भगवान का वास होता है, अल्लाह का वास होता है, यीशु का वास होता है, और उसमें से जो संगीत निकलता है वो हर दिल को छू लेता है। शायद इसीलिए जब भी हम ये गीत सुनते हैं, जाग दिले दीवाना, ऐसा लगता है कि हमारा दिल भी अब जग सा रहा है, एक वो जो स्वप्न हम लोगों ने देखा है उसे पूर्ण करने की बारी है। और जैसे ही सामने वैसा ही कोई दिखता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये कहीं वही आहट तो हमें सुनाई नहीं पड़ रही है जिसको हमने सुना है सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों में।

0: हैं वो ये कि वर्ष 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म का निर्माण किया गया था, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई वो, और उस फिल्म के संगीतकार चित्रगुप्त साहब ही थे
1: जी।
0: तो देखिए उसी तरह से जैसे कहते ना कि वो जो एक गांव की जो मिट्टी होती है उसमें कोई रचा बसा व्यक्ति अगर होता है नेहा जी, वो कोई निर्मिति करता है किसी भी कला की, तो उसकी जो कला होती है वो हमारे रूह को छू जाती है।
1: बिल्कुल, वो जो बात होती है वो चाहे आवाज़ में हो, लेखनी में हो, संगीत में हो, एक्टिंग में हो, किसी ने अगर वो रिदम पकड़ लिया, जिसे शायद हम सभी ढूंढ रहे होते हैं, और कुछ लोग उस ढूंढने के उसकी पहली सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, तब वो जो भी लिखते हैं बनाते हैं ऐसा लगता है अरे यही तो हम भी कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। जैसे ही गाना अपने अंतिम पड़ाव पर आता है और वो फिरोज़ खान साहब अपने आँखों के ज़रिए एक आई मूवमेंट करते हैं कि अब ख्वाबों से निकलने की बारी है, वो 360 डिग्री अपनी आईज़ को, अपनी पुतलियों को घुमा लेते हैं, और कैमरा कितना सुंदर है, कैमरे ने इसको कैप्चर किया है, मैं तो देखती ही रह गई इस मूवमेंट को।
0: फिल्म का नाम है ऊंचे लोग।

0: नेहा जी, जैसे जैसे ये गीत आगे बढ़ रहा है
1: जी,
0: बहुत सारी भावनाओं को हमारी भी बहा लिए जा रहा है। संगीत की मधुरता है, आवाज की मधुरता और शब्दों को। मजरूह सुल्तानपुरी ने जब इस गीत को लिखा तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी ओस की जो बूंदे थी उसकी स्याही बनाई है।
1: हाँ।
0: और अपने दिल के जज्बात को एहसास के पन्ने पर उकेरा है कि सीधे हमारे दिल तक उनकी बात पहुंच रही है। और हम लोगों ने संगीतकार चित्रगुप्त की बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन हम एक बात और दोस्तों से साझा करना चाहते हैं।

0: वंदना जी
1: जी
0: कुछ और भी सुनाई पड़ रहा है क्या आपको भी पड़ रहा है?
1: नेहा जी देखिए एक खूबसूरत सी धुन हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे और जब ये धुन बज रही है तो कहीं ठंडी सी बयार जैसे लग रहा कहीं कोई बर्फीली सी हवा हमारे तन को छूकर जा रही है और ये जो हवा है उसमें जो खुशबू घुली हुई है वो कश्मीर की वादियों से आई हुई है।
0: हाँ और मैं बताऊँ एक बार की बात है कि उस इलाके में मेरा रहना हुआ था और बर्फबारी हो रही थी और वो जो ठंडक है ना सफेद वाली ठंडक पता नहीं कैसे कागज पर काली या नीली स्याही के रूप में उतर जाती है और किसकी कलम से निकली ये सारी बातें।
1: देखिए नेहा जी जब ये गीत सुनेंगे हमारे श्रोता भी जिसकी हम बात कर रहे हैं इतनी बड़ी भूमिका बना रहे हैं तो जब उनका नाम सुनेंगे तो दिल भी उनका गुलजार गुलजार सा हो जाएगा।
0: ठीक है
1: तो पहचान पा रही है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ किस गीतकार की?
0: मैं पहचान गई हूँ। सुधीर श्रोताओं आप सुनिए उसके बाद और बात करेंगे।

0: बात कर रही हैं शायद गुलजार साहब की?
1: नेहा जी, इसमें शायद लगाने वाली कोई बात ही नहीं थी। जब अच्छा, मैंने ये बोल दिया था, आपको हिंट भी दिया था कि दिल गुलजार हो जाएगा तो देखिए, इस तरह के जो करामाती गीत होते हैं
0: जी,
1: जो भावनाओं की चाशनी में डूब कर लिखे जाते हैं और ऐसे ऐसे शब्द इकट्ठा करके गुलजार साहब लेकर आते हैं कि हर पल एक नया पल लगता है, लगता है कि वो तरोताजा से नजर आ रहे हैं। और ये जो झेलम का किनारा है जहाँ पर दो प्रेमी जन नाव पर सवार है और एक दूसरे को देख रहे हैं, वो जो एक नजर का प्यार होता है
0: जी,
1: वो किस तरह से पूरी रूह पर अपनी कब्जा कर लेता है। हम बेबस से हो जाते हैं, हमको चलाने वाला फिर कोई और होता है
0: बिल्कुल सही।
1: तो देखिए, उसी रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिमी शेरगिल और साथ में खूबसूरत सी बेहतरीन अदाकारा मिनिषा लांबा नजर आ रही हैं।
0: शांतनु मोहित्रा ने तो कमाल किया है, नया सा म्यूजिक जान पड़ता है। लगता है ये जो बांसुरी है और कई बार म्यूजिक थोड़ा चढ़ाव की ओर होता है, आवाज उतार पर होती है, और कई बार म्यूजिक उतार पर होता है और आवाज चढ़ाव पर होती है। ये जो कॉम्बिनेशन है इस गीत में, वो सुनने और देखने दोनों के लायक है।

ये भी बड़ा इत्तेफाक है कि गुलजार साहब लिखते हैं और उनके कई गीत श्रेया घोषाल जी ने गाए हैं, और जिस तरह से वो गाती हैं ऐसा लगता है जैसे आत्मा की आवाज़ मालूम पड़ती है, बिल्कुल गहराई से आवाज़ आ रही है, और वो जो गहराई है हम सभी के हृदय में उसी तरह से उतरती चली जाती है। कभी कभी आसपास धूप रहती है, चांद रहता है, शाम रहती है,

ये जो बात है ना श्रोताओं, कि कभी कभी मीन्स ये जो प्रेम की भावना है, प्रेम की खुशबू है, उसकी रंगत है, उसमें जब कोई हृदय डूबता है तो उसको ऐसा ही महसूस होता है कि वो जो सिंदूरी रंग है उसके आसपास है। शाम की एक गुंजन है ना, वो उसे सुनाई पड़ती है। तभी शायद जो भी हृदय प्रेम करना जानता है, प्रेम करना चाहता है, उसका जो मुखमंडल है बहुत सौम्य, सुंदर और इस तरह की रंगत से भरपूर होता है।

0: दोस्तों, बोलते ही अनगमी कार्यक्रम का ये जो अगला गीत है आप सुनेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी की चाहत बयां की गई है। दिल की चाहत जब बयां होती है तो छोटी छोटी चीज़ें, नज़रें इनायत होती हैं। वो चाहे हवा हो, वो चाहे बारिश हो, वो चाहे सूरज की किरणें हो या पायल की छमछम हो।
1: और जब किस तरह के शब्द जैसे कि अभी आपने व्यक्त किए हैं, ये सब हमें मिलते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर एक खूबसूरत सा जज्बा उभर कर आता है हमारे दिल में, जिसे हम याद के रूप में जानते हैं। और यादें जो होती हैं हमारी बहुत अमूल्य धरोहर होती हैं, जो हमारे दिल से जुड़ी हुई होती हैं, जो ख्वाहिशों से भरा दिल होता है उनमें ऐसे हम संजो कर रखते हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत कीमती चीज़ हो हमारे लिए। और सच में वो कीमती ही होती है, क्योंकि ये यादें उन पलों की याद दिलाती हैं जब सब कुछ बहुत खूबसूरत सा था, मिलन ही मिलन के रंग थे, लेकिन जब जुदाई का रंग आता है तब वहाँ पर ये याद एक एक करके हमारे जहन में इकट्ठा होती है।
0: और उन यादों में बसे होते हैं आंसू, दर्द, तन्हाई, बेकरारी, बेचैनी और आहें।

0: झोंका हवा का आज भी, जुल्फें उड़ाता होगा ना, दुपट्टा सरकता होगा, और वो जो बालों में फूल छुपा हुआ सा था कहीं दुपट्टे से, वो दिख जाता है एक प्रेमी मन को। आ हा हा हा हा, क्या बात है।
1: हम दिल दे चुके हैं सनम, संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बनाया था, और ये गुजराती नाटक झारवेंद्र चंद मेधानी जी ने जिसे लिखा था
0: जी,
1: शीतल ने कथी, उस पर ये आधारित ये कहानी थी जिस पर ये फिल्म बनी।
0: और स्माइल दरबार का म्यूजिक, कई बार हरिहरन साहब और स्माइल दरबार जी शब्दों को और म्यूजिक को वो उच्च स्तर पर ले जाते हैं, और तुरंत ही धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल एकदम ठहराव पर ले आते हैं। वो गाना आज भी जीवंत है, जो भी प्रेमी मन इसे सुनता है वो इस गाने के खुद को बहुत करीब पाता है। और खूबसूरत सी ऐश्वर्या राय, बहुत कम मेकअप है, उनको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी ये बड़ी आँखें बहुत सुंदर लग रही हैं। और जब वो सीन आता है शुभ मंगल सावधान, ये जो संस्कृत का श्लोक डाला गया है, और ये एक्टिंग जब उनसे सिंदूर नहीं लग पाता है, अजय देवगन बोलते कम हैं, अपनी आंखों से अपनी एक्टिंग से पूरे स्क्रीन पर बात करते हैं, ऐसा लगता है ना अजय देवगन साहब के साथ।
1: नेहा जी, उनकी जो आंखें हैं
0: है ना, बोल जाती हैं,
1: वो बोलती हुई सी महसूस होती है, वो कम बोलते हैं, जैसे आपने कहा कम गो हैं,
0: हाँ,
1: कम बात करने वाले हैं,
0: हाँ,
1: वो अपने हाव भाव से अभिनय करते हैं,
0: और
1: खास तौर पर जब उनकी आंखें उठती है ऊपर, तो लगता है सब कुछ ठहर गया है। और सलमान खान की चंचलता, लेकिन यहाँ पर सोग में डूबा हुआ उनका मन है।
0: मीठी सी पीड़ा जो है उसमें तब्दील हो जाती है, और ये गाना भी कुछ वैसा है, अच्छा लगता है सुनने में।
1: नेहा जी, आपने हरिहरन जी की बात की थी, लेकिन
0: हाँ,
1: साथ में लयकारी भी एक और आवाज आती है,
0: जी, जी, हाँ,
1: ना?
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो वो जो आवाज है वो कविता कृष्णमूर्ति की है,
0: हाँ,
1: जो इस गीत को और ज्यादा गंभीरता दे रही है।
2: और खास तौर पर इस गीत की खास बात ये भी है कि इसमें सिनेमेटोग्राफी बहुत ही खूबसूरती के साथ उसका प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, इस गीत को सुनने के दौरान हम ये पाते हैं कि परिणय सूत्र में बंधा हुआ एक रिश्ता, उसका रंग गहरा नजर आ रहा है, वो पुख्तगी की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक प्रेम भी जन्मा था कभी, लेकिन अब पात्र बदल गए हैं, वहाँ रंग उदासी का है, जुदाई का है, कुछ छूट रहा है जैसे।

0: जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां भी आती हैं जहां हमें लगता है कि कुछ सवाल कुछ प्रश्न अगर अनुत्तरित ही रह जाएं तो ही बेहतर होगा।
1: वंदना जी
2: जी नेहा जी
1: ऐसा लगता है ना जब हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं तो हम भी ठहर जाते हैं म्यूजिक के साथ बहते चले जाते हैं।
0: नेहा जी बात तो आपने सच कही, तो म्यूजिक के साथ बहने का मौका आएगा अब हमारे दोस्तों का हमारे साथ अगले सप्ताह, क्योंकि अब समय हो गया है विदा लेने का। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार।
0: बोलते नगमे।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर था नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म दयावान के गाने से, आवाजें अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की, शब्द रचना अजीज कैसी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। तो आइए सुनते हैं फिल्म दयावान का ये गाना।

आए दिन बहार के। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंधा कानून का गीत आशा भोसले और एसवी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म संजोग से। आवाजी हैं मुकेश और लता मंगेशकर की, गीत और संगीत मदन मोहन का।

प्रेम बंधन, ये है फिल्म का नाम। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आवाजी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत, तो आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम बंधन का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

और इसी के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। आइए सुनते हैं नरेंद्र चंचल के स्वर में ये भक्ति रचना।

और इसी के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा।

0: वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए बीडीआर के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का

0: पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties.

0: पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तराखंड टिल टुमारो. Meanwhile, severe heat wave gripped several parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45-degree mark. In national capital, an orange alert has been issued for heat wave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
1: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है. फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग़ देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया. वज़ीर-ए-आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है. मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है. अकवामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा. भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है. और IPL क्रिकेट में मेज़बान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है. अब खबरें तफसील से. भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी. इन माहिदों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए. ये माहिदे दोतरफा ताल्लुकात की खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदही करते हैं. दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए. भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं. बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफ़ी गौर व खौज किया है.
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को

0: अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दोतरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाज़रानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मईशत के शोबों में तआवुन को वसअत देंगे।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुतहद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क्स की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
1: वजीर आजम मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटरेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दोतरफा साझेदारी को मजीद वसअत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कू डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
0: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी।

0: हो और फ्यूचर रेडी भी हो, और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और गजाइत की बेहतरी के ज़िमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती तआवुन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तसादी शराकत दारी के माहदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वह दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सबका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि CAA के तहत तहफ़ फराम करदा 7 बिरादरियों के अराकीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले NEET UG इम्तिहान के महफूज बेहतर तरीके से और शफाफ तौर पर दोबारा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नकायस से पाक इंतजाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रधान ने यह बात आज नई दिल्ली में मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक आला सतह जायजा मीटिंग के सदारत करते हुए कही। अंडर ग्रेजुएट तिबी तालीम में दाखिले के लिए NEET UG का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनक़द किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में 5 मुलजिमीन को अगले महीने की 2 तारीख तक अदालती तहवील में भेज दिया है। इन मुलजिमीन में मांगीलाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। अदालत ने एक दिगर मुलजिम शुभम खैरनार की CBI तहवील में तौसी कर दी है। CBI ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि खैरनार की मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है ताकि उन दिगर मुलजिमीन की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके जिन्हें खैरनार ने NEET UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चे बेचे थे। पर्चा लीक होने के इल्जाम के दरमियान पिछले महीने की 3 तारीख को लिया गया NEET UG 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था। इस मामले में हुई बेजाबतगियों की जामे जांच की जिम्मेदारी का काम CBI को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मरदमशुमारी के हिस्से के तौर पर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के दिफाई हसूलियाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरका फरोग, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका बरामदात के लिए बारावर कोशिशों को तेज़ करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निज़ामों में तआवुन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरतहाल के बावजूद अक़वामे मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाज़ा 6.4% लगाया है जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अक़वामे मुत्तहिदा के सीनियर माहिर माशियात इंगो पीटरले ने आलमी माशी सूरतहाल और इम्कानात से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक़वामे मुत्तहिदा के इक्तसादी जायजा और पॉलिसी डिवीज़न के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्य मईशत ढांचा जाति इस्लाम

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनीतिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले

ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों

बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इजराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और

0: सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
3: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: पर हम G20 की बात करें, एक तो यह बहुत बड़ा सफल आयोजन था, यह तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं। पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
4: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard.

0: apart. When nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारत की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
2: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई, जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
0: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
0: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वांट टू ब्रिंग
3: सोलार एनर्जी

0: into our lives, we will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training and building institutions. We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving, costs are coming down, and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
2: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसमें इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला है, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
3: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे। ये इन सभी देशों

0: के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
3: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटॉनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
3: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।

0: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं, जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों, किसी शायर ने खूब कहा है, जिंदगी एक खूबसूरत नगमा है, इसे गुनगुनाना सीख लो। हर पल में एक नई कहानी है, इसे मुस्कुराकर निभाना सीख लो। दोस्तों, 1960 और 70 का दौर हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा माना जाता है, जब रफ़ी साहब की आवाज़ दिल को छू लेती थी, किशोर दा की मस्ती झूमने पर मजबूर कर देती थी और लता दीदी की आवाज़ सीधे रूह में उतर जाती थी, तो वहीं पर मुकेश की आवाज़ दिलो दिमाग पर छा जाती थी। एक ऐसी ही खूबसूरत नज़्म जिसे सुनकर आज भी दिल कह उठता है कि बस वक्त यहीं थम जाए और हम इस गीत को और सुनते जाएं और सुनते जाएं।

कैसा लगा ये गाना दोस्तों? इस गाने को सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई हों। उस दौर के गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। इस रेट्रो कारवां को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आर डी बर्मन यानी हमारे पंचम दा के उस दौर ने, जिनके संगीत ने हर युवा के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। वक्त का पहिया चलता रहा और हम आ पहुंचे उस दौर में जब कैसेट प्लेयर और वॉकमैन हर घर की जान हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द रोमांटिक 90s की। नदीम श्रवण, जतिन ललित का संगीत, अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण, इन सब की आवाज़ों ने हम सभी को मोहब्बत के नए मायने सिखाए।

दोस्तों, जिंदगी में तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन दो चीजें कभी नहीं बदलती। पहली, दिल में धड़कने वाली मोहब्बत, और दूसरा, उस मोहब्बत को बयां करने वाला हमारा फिल्म संगीत। अगर हम बात करें उस दौर की, जब प्यार में सलीका था, सादगी थी और आंखों आंखों में इकरार होता था। जब रफ़ी साहब गाते थे तो ऐसा लगता था मानो दिल की बात सीधे जुबां पर आ गई।

दोस्तों, इस सादगी और इस खनकते संगीत का मुकाबला ही नहीं है। लेकिन वक्त बदला, जमाना बदला और हमारे प्यार का इजहार करने का अंदाज भी बदल गया। आज का प्यार सिर्फ आंखों की खामोशी तक नहीं रहता, आज का प्यार थोड़ा सा क्रेजी हो गया है, थोड़ा बिंदास, और पूरी दुनिया के सामने गाकर झूमकर अपना हक जताने का नाम है।

दोस्तों, आज जिन फिल्मों के गाने हमने आपको सुनवाए उनके नाम हैं महबूब की मेहंदी, पत्थर के सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, ताजमहल और सड़क। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास। शब्द रचना थी आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, समीर, साहिल लुधियानवी की और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निखिल विनय, रोशन और नदीम श्रवण। तो इसी के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित प्रेम कुमार मलिक का राग नंद में धमार गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित प्रेम कुमार मलिक का राग नंद में धमार गायन, आपके साथ पखावज प्रसंगत की पंडित रविशंकर उपाध्याय ने। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की।